Sumita Drumadala Shobhini Suhasini Sumadura Bhashini

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। आज सोमवार है, सन 1948 के आषाढ़ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026 दिन के 11:58 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा

0: लता मंगेशकर व साथियों की आवाज में अभी आपने सुना दो आंखें बारह हाथ फिल्म के इस गीत को।
1: दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी

0: मन मंदिर की ज्योति जगा दो,
1: मन मंदिर की ज्योति जगा दो,
0: घट घट बाजी रे।

0: शोगन फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना गीता राय की आवाज में। अगले गीत से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

अतः समस्त कल्याण गुणा विराम सीता मुखाम्बरो चंचरी कर।

आस लगाए जो थे तुम ही आस लगाए बने उसी के काम। जय रघुनंदन जैसी अगा।

0: हो तुम
1: मन मन में हो तुम
0: मोरे अंग अंग तुम ही समाए जानो या जानो ना हो तुम।

0: मोरे अंग अंग तुमने समावे
1: जानो या जानो ना हो तुम्ही मन मोरे।

देख देख तोरी।

राधे के तूने बंसरी चुराई।

क्या तेरे मन आए, काहे करार मचाए मचाए, राधे के तूने बंसरी चुराए, राधे के तूने बंसरी चुराए।

0: पर न बताए नट खट कर ढिटाए ढिटाए राजे के तूने बंसरी चुराए राजे के तूने बंसरी चुराए।
1: मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
3: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
3: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
1: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
3: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
1: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
3: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनआर प्रसाद जी और अखिला जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी राम दुलारी जी का।
3: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का, वो लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षा प्रद, प्रेरणा प्रद और ज्ञान वर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
3: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय, प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
3: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
3: श्रोताओ इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
1: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
3: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
3: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी अश्वता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
3: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
3: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
3: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
3: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
4: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे आगे बच्चों का क्या हो रहा है,
5: हमारे घर का सारा सामान गिर गया।
6: अरे क्या
7: हमारे खेतों में पानी भर गया,
8: सारे फसल बर्बाद,
9: फसल बह गई।
10: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
11: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यहीं बस जाऊं।
10: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
11: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
10: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
12: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
10: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
9: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
10: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
4: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, जब से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
13: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
10: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
11: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
9: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान ले ली इस गर्मी में।
10: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
5: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा।
6: लगता है हो गई है
5: क्या?
11: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल
6: फसल बह गई।
5: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान उसी में तो ऊपर ले जाना होगा।
6: चलो जल्दी ऊपर,
5: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा, साथ चलो, जल्दी चलो
6: चलो चलो।
5: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
6: ध्यान से संभल कर।
10: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़े। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
9: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहु ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशुपालन। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता, मैं ही जीवन हूं धरती का। मुझे नष्ट मत करो, मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती, जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहाँ निकल गई है तू? अकेले जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यही तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो,
1: हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: किन्नौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी।
2: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है रे।
1: हाँ?
4: वो गौरा कह रही है,
1: हाँ?
4: कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
1: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
4: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
1: छत्ते? सात आठ छत्ते? कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
1: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी पर तो हो ही जाएगा।
4: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: चप्पर फाड़ कर।
1: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
4: हाँ, हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दांतों से तोड़ लेंगे।
1: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
2: हाँ, चल चलते हैं।

0: कैसा था वहां का दैनिक जीवन? जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गई। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है।
3: अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
1: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।
3: वो देख गौरा।
1: अरे हाँ,
3: वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
3: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
3: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
3: ये गांव के लोग तो नहीं लगते। अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
3: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
3: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा लगेगा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
3: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: मगर ये औरतें और बच्चे।
3: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी। नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
4: हाँ क्या बात है?
3: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
4: क्या क्या
3: जल्दी आओ, हमारे पेड़ काटने नहीं देंगे।
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
1: हाँ, हमारे पेड़ नहीं।
3: सुनो
1: सुनो सुनो,
5: वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
6: बिल्कुल
5: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।

0: आप हम पेड़ों से चिपक गई है, अब चलाओ कुल्हाड़ी।
1: अभी देखता हूँ सबको बड़ी बहादुर बनती है।
0: हम जान दे देंगे मगर पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। अरे देख के क्या है, चलाओ कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा शिब्बा, तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
2: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़ कर पेड़ों से रख देखो। ये बोला ये देखो, ये सभी बोलो आगे चलो,
3: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
4: चिब्बू भाग ले यहाँ से,
3: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
5: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
6: ऐसी जिनकी पेड़ से कैसे छोड़ा ही पेड़। अरे भाई गौरा बहुत कमाल कर दी,
7: जीतती रहे मिट्टी जीतती रहे।
0: ये तो हम सबका कर्तव्य है।
3: दोस्तों इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
8: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
9: और विमलेश को
8: कुसुम लता
9: जगबंधु
8: चेतना
9: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
8: नमस्कार, नमस्कार।
10: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के एक बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
11: सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है और डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आज जयपुर में ऋण पुनर्गठन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि ऋणों की रीप्राइसिंग से डिस्कॉम्स को हर साल ब्याज पर उल्लेखनीय बचत हो रही है। बैठक में बताया गया कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से पीक आवर्स में महंगी बिजली की खरीद पर निर्भरता कम होगी और बिजली आपूर्ति अधिक विश्वसनीय बनेगी। मुख्य सचिव ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वांगीण विकास प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित करता है और इससे राष्ट्र की प्रगति को नई गति मिलती है। आज सोशल मीडिया पर संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश इस प्रेरणादायक भावना के साथ भारत की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसमें कहा गया है कि महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित करना, युवा पीढ़ी की रक्षा और पोषण करना और राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, समृद्धि तथा सुशासन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का निरंतर कर्तव्य है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को मजबूत करना है, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले नैतिक और इनोवेटिव अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा स्वास्थ्य परिणामों और

0: समानता में सुधार के लिए राष्ट्रीय और उभरती स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना है। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया है। वे आज नई दिल्ली में जल बजट और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी के साझा प्रयासों से ही सार्थक परिवर्तन संभव है। श्री भारद्वाज ने बताया कि मंत्रालय पिछले 1.5 साल से इस पहल पर काम कर रहा है। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी करने और अपने अपने क्षेत्रों में जल संरक्षण और जल प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 की पहली ट्रेन आज दोपहर बाद जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम मदुरई के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन को देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत हरी झंडी दिखाएंगे। इस उपलक्ष्य में दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम आयोजित होगा। श्री कुमावत वरिष्ठ जन से मुलाकात भी करेंगे। जैसलमेर जिले में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस साल करीब 47 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वन विभाग ने अपनी नर्सरियों में विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार कर लिए हैं। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: जिले का सबसे बड़ा टारगेट वन विभाग का है। वन विभाग को इस बार 32.53 लाख पौधे लगाने हैं। कुल 34 विभागों को 46.95 लाख पौधे लगाने हैं। जिले के सभी नर्सरियों में वितरण के लिए 17.62 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। इसके अलावा 32 लाख पौधे अलग से तैयार है, इन्हें वन विभाग स्वयं लगाएगा। उप वन संरक्षक कुमार शुभम ने सभी विभागों से अपील की है कि वे अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पौधे ले जाएं और पौधरोपण सुनिश्चित करें। मनीष यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: सवाई माधोपुर जिले में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने के लिए ग्राम पंचायतों में वन मित्र बनाए जाएंगे। ये वन मित्र पंचायतों की बंजर चारागाह और सिवाय चक भूमि पर लगाए गए पौधों की देखभाल करेंगे, साथ ही वन और वन्य जीव संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक भी करेंगे। जिला प्रशासन के अनुसार इस पहल का उद्देश्य हरियाली बढ़ाने के साथ ही स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है। एचपीवी टीकाकरण अभियान में बारा जिले ने एक ही दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले में शुक्रवार को एक ही दिन में 247 किशोरियों को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई, जो प्रदेश में सर्वाधिक है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम मुमल।
3: मुमल सुनने वाली सभी सखियों को आपकी रेडियो सखी शीतल का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज कार्यक्रम की शुरुआत हम ऐसे विषय पर करने जा रहे हैं जो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी समस्या साबित हो गई है। जी हाँ सखियों, राजस्थान में देखें तो अभी और खासकर हमारे जैसलमेर के अंदर या हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पानी की जो किल्लत है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो किल्लत हो गई है, पानी की जो समस्या हो गई है, उसका तो समाधान अपने आप धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर हम आगे अपने भविष्य में ऐसी दिक्कतें ना आए तो इसके लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे अभी बारिश का मौसम है, कुछ ही दिनों में हो सकता है जैसलमेर में भी बारिश चालू हो जाएगी, तो बारिश के पानी को हम सहेज कर रख सकते हैं। तो बरसाती पानी को अगर सहेजने के लिए सबसे आसान और जो प्रभावी तरीका होता है ना सखियों, वो होता है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। इसका मतलब है कि छत के पानी को पाइप के जरिए हम फिल्टर करके किसी टैंक में या ड्रम में इकट्ठा करें, और या कई बार लोग क्या कहते हैं, आप शहरों में देखिए कि बॉम्बे ओम्बे है या जो बड़े शहर होते हैं यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो बहुत चलता रहता है। जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है ना सखियों, वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं बड़ा होता है। उसमें यहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आप देखिए जो बरसाती पानी को गड्ढे खोद के सहेज कर रखा जाता है, जमीन के अंदर डाला जाता है ताकि जब जरूरत पड़े तब तो उस पानी को फिल्टर करके यूज कर सके। तो रूपराव हॉर्वे

सिंह के क्या क्या होता है कि हम छत के पानी को जो है पाइप के जरिए या उसको फिल्टर करके, या आपको टाका है या टैंक है आप उसको छत पे रख दीजिए, बारिश का पानी आप इकट्ठा कीजिए, फिर हम उसे फिल्टर करके उस पानी को हम यूज़ जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या कुछ छोटे छोटे मतलब स्टेप होते हैं बरसाती पानी को सहज कर रखने के लिए, जो हम लोग अपने घर पे भी कर सकते हैं। जैसे पानी को इकट्ठा करने के लिए पहले अपनी छत को आप अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, ताकि कोई भी धूल मिट्टी कचरा पानी ना मिले। क्योंकि एकदम से क्या है कि देखिए छतें जो होती है, पहले आंधी आती है हमारे राजस्थान में, तो आंधी तूफान उसके बाद बारिश हमें मिलती है, तो बहुत पहले से बहुत धूल मिट्टी की गंदगी हो जाती है ना। तो आप पहले अच्छी तरीके से धूल मिट्टी और कचरे को पानी में जो है वो जो ना मिले इसलिए उसे साफ कर लीजिए। फिर छत के जो मुहाने होते हैं उस पर जाली जरूर लगाए, ताकि जो पत्तियाँ होती हैं वो पाइप में ना जाए। और उसके बाद जो पाइप से जो पानी आएगा उसको आप स्टोरेज कीजिए किसी टैंक में, ड्रम में। तो इससे क्या होगा कि आपको आगे जो है पानी की दिक्कतें नहीं आएगी। बारिश की शुरुआत में भी छत पे जमी गंदगी भी बहकर आ जाती है, तो इससे टैंक में जाने से रोकने के लिए आपको क्या करना है कि मतलब एक वॉल्व का उपयोग कर लेना। एक फर्स्ट फ्लश करके वॉल्व आता है सकते हो मार्केट में, आप उसे लगाएंगे तो इससे शुरुआत के 10-15 मिनट का जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाएगा और फिर जो साफ पानी है वो टैंक में आएगा। अब टैंक में या तो हम ड्रम में भी इकट्ठा कर सकते हैं जैसा मैंने कहा, या फिर आप पाइपों के जरिए एक बड़ा गड्ढा खोद के, या अपने जो टैंक होते हैं कई घरों में वाटर स्टोरेज के लिए बड़े बड़े टैंक होते हैं, आप वहाँ पे भी पानी जो है वो स्टोरेज कर सकते हो। टैंकर में पानी जाने से पहले उसे एक फिल्टर से, जैसे आप देखिए ना कंकड़ होती है, रेत होती है, ये इसकी परतें पूरी पानी में जली जाती है, तो पानी को फिल्टर करने के लिए क्या करें कि आप टैंक में जाने से पहले उसे एक फिल्टर कर दीजिए, ताकि जो सारा पानी है वो छन के जाए। ये इससे पानी में जितनी भी भारी अशुद्धियाँ होती हैं वो सारी साफ हो जाती हैं। और फिल्टर मशीन भी आपके मार्केट में जो है हमें मिलती है छलनी की, या आप एक ऐसी जाली लगा दीजिए, एक ऐसा सिस्टम लगा दीजिए कि पानी जो है वो छन छन के ही टैंक के अंदर इकट्ठा होए। साफ पानी को इकट्ठा करने के लिए भी प्लास्टिक के वाटर टैंक या लोहे के बड़े बैरल का हम उपयोग कर सकते हैं, और यह हम सुनिश्चित करें कि टैंक का जो ढक्कन है वो पूरी तरीके से बंद हो, ताकि उसमें किसी तरीके के कोई कीड़े मकोड़े या धूल ना जा सके और किसी भी तरीके की कोई काई जो होती है वो ना पनपे। जब हम ये सब चीज़ें कर लेंगे सकते हो, उसके बाद अगर आपने बहुत अधिक पानी स्टोर नहीं करना चाहते तो छत के पानी को जमीन में बने सूखते गड्ढे में आप डाल दीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि पानी छनकर जमीन में चला जाता है, तो हमारा जो भूजल स्तर है वो भी बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, जितना भूजल हमारी जो जमीन सूखती जाएगी, भूजल स्तर गिरता जाएगा, तो पानी की जो कमी है वो हमें बहुत ज़्यादा होगी। अब बरसाती पानी का और भी कई चीज़ों में आप उपयोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बारिश आई तो हमें सीधे जाके किचन में चाय और पकौड़े ही बनाने हैं, हम ये चीज़ भी कर सकते हैं। ये भी एक स्मार्ट टेक्निक है, एक स्मार्ट ह्यूमन की। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि संग्रहित जो भी पानी आपने इकट्ठा किया है उसको आप बागवानी में यूज कर लीजिए, पौधों की सिंचाई में यूज कर लीजिए, इससे फर्श धो सकते हैं, कपड़े आप धो सकते हैं बरसाती पानी से, टॉयलेट को मतलब बाथरूम में आप यूज़ कर सकते हैं। और बरसाती पानी का मतलब जो है कि मतलब जो भी हमने पानी इकट्ठा किया है, संग्रहित किया है, उसको अगर आपको पीना है या खाना पकाने के लिए भी उपयोग करना है, तो उसके लिए पहले आप पानी को उबाल लीजिए और पीने के लिए आप आरओ फिल्टर का उपयोग कर लीजिए कि जो टैंक है उसका पानी सारा आरओ फिल्टर से फिल्टर होके आ रहा है, तो वो भी हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद है। आप देखिए पहाड़ी इलाकों पर जो होता है ना बरसाती पानी का बहुत स्टोरेज किया जाता है जलाशयों में, और वो तो जलाशयों के पानी को मतलब जो झरने होते हैं वहाँ पे हर गांव, आप पहाड़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों पे जाइए जहाँ पे ग्रामीण लोग रहते हैं, उनके कोई पानी का स्टोरेज नहीं होता, उन झरनों से जलाशयों से जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं वहाँ से वो पानी इकट्ठा करते हैं और उसको पीते हैं, और उन्हें किसी कोई नुकसान भी नहीं होता है। और अगर आप जो भी अगर ये स्टोरेज है अगर आपने ये सखियों आज से करना चालू कर दिया, तो मैं आपको ये कहूँगी जब भी बारिश होती है और आपने इसकी शुरुआत कर दी, तो भविष्य में जो है पानी की हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी देखिए पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। तो अगर हम कोशिश करें, छोटी छोटी कोशिश करें, तो आगे हमारे लिए जो है हमें बहुत फ़ायदा होगा और हमें पानी की किसी भी तरीके की कोई किल्लत ना होगी। तो यही है सखियों, आज का सबसे पहला विषय यही था। अब मैं आगे भी आपसे बातें करती रहूँगी, उससे पहले मैं अपनी सखियों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर अपने जीवन को आपको मतलब आगे बढ़ाना है, अपने जीवन में खुशियाँ लानी है, तो जल का बचाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल ही सखियों जीवन है। और जल जो है अभी बहुत ज़्यादा देखा जाए तो हमारा भूजल स्तर जो है बहुत गिरता जा रहा है, तो बरसाती पानी को तो आप बचाइए बचाइए, उसके साथ ही साथ घर पर भी

0: आप पानी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही सीमित मात्रा में, जितनी जरूरत हो उतना ही कीजिए, क्योंकि देखिए पानी अगर ज्यादा हम वेस्टेज करेंगे तो उसका नुकसान हमें ही होगा। आइए, चश्मे बातें तो बहुत हो गई, आइए आपको सुनाती हूँ एक जरूरी संदेश और उसके बाद एक प्यारा सा भजन।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: को अपना हाल सुना कर देखो,
1: एक बार तो माँ को अपना हाल सुना कर देखो।
0: मैया झोली भर देगी, आशा पूरी कर देगी,
1: मैया झोली भर देगी।

सखियों, अभी आप सुन रहे थे नरेन चंचल की आवाज में माता का ये प्यारा सा गीत। सखियों, अब हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे, देखिए अब महिलाएं जो है समय के साथ साथ बढ़ रही है, बाहर जा रही है, और मतलब हर फील्ड में जो आप देखिए महिलाएं जो है बाहर अपना जो भी काम कर रही है, तो क्या होता है ना कि चाहे आप घर पर हो चाहे आप बाहर हो, आपको हमेशा जो कई अवसर ऐसे मिलते हैं जिनके आपको लाभ लेने चाहिए, लेकिन हम लोग क्या है ध्यान नहीं दे पाते। घर पे भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती है जो हमें देने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन अवसरों का लाभ नहीं लेते। हम सोचते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, या हम ये सोचते हैं कि नहीं अभी क्यों हम इसकी जिम्मेदारी ले, जो चल रहा है वैसे ही चलने दे। या वर्किंग क्षेत्र में है और आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई मतलब अवसर मिल रहा है, आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आपको उनका लाभ लेना चाहिए। क्योंकि अवसरों का लाभ क्या होता है ना कि आपसे आपको जागरूकता मिलती है, आपको एक प्रिपरेशन मिलने की तैयारी मिलती है कि नहीं मुझे अभी आगे इतने इतने डेट पे या इतने इतने समय पर अपना ये काम करना है। इसके साथ साथ आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। सखियों, आप अगर घर में भी कोई जिम्मेदारी लेंगे तो आप देखिए जैसे ही आप कोई जिम्मेदारी लेंगे आप में अवेयरनेस आ जाएगी, जागरूकता आ जाएगी आपको उस काम के प्रति, नहीं ये काम अब मुझे दिया गया है तो मुझे इस काम को करना ही है। और उसके अलावा अगर आपने मान लो कि ऑफिस वर्क में आप जा रहे हैं और आपके ऑफिस में किसी तरीके का कोई मतलब काम है और जो भी है, तो आपको उसमें भी अगर आपको एक अवेयरनेस आ जाएगी, आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं अब ये जो है सारे काम मुझे ही करने हैं, इसके साथ ही साथ मुझे एक लक्ष्य निर्धारित करना है। और निर्णय लेने की जो क्षमता होती है सखियों, वो हम सखियों में आ जाती है कि फटाफट हमें निर्णय लेने हैं कि नहीं ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है तो इसके लिए निर्णय भी मुझे ही लेना है, तो मैं कुछ निर्णय इसके लिए ले लूँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि अवसरों का जो लाभ है वो हमेशा हमें उठाना चाहिए। हमें कभी भी अवसर, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई अवसर मिल रहा है किसी काम के लिए, किसी आपको आगे बढ़ने के लिए, तो आप उसका ज़रूर लाभ उठाएं। अब ये बात आ जाती है कि यार अवसर तो हमें मिल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि मिल जाता है आपको समझ ही नहीं आता है या आप कैसे उसका लाभ उठाएं या कैसे आगे बढ़े, तो इसके लिए आपको जो भी अवसर या जो भी अपॉर्चुनिटी या जो भी जिम्मेदारी आपको दी जा रही है ना सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले ये मत सोचिए कि अवसर एकदम से आपको बहुत प्रिपरेशन से मिलेंगे, आपको अचानक मिल जाएगा। आपको कह देंगे कि ऑफिस में आप कार्य कर रहे हैं तो कह देंगे कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही संभालना है, या आप घर पे हैं तो आपके पैर जो इन लॉज होते हैं या आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कि यार अब घर की ये जिम्मेदारी या घर का ये काम तुम ही करो। तो इसके लिए आपको पहले से तैयार होना चाहिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप पहले से इसके लिए तैयार रहें। और बाहर क्या होता है कि ऑफिस वर्क में आपका जो कौशल होता है, आपकी जो शिक्षा होती है, उसको देख के ही, या आपकी जो कहते हैं ना कि प्लानिंग कैसे आप कर रहे हो, योजनाएं कैसे बना रहे हो, उन सबको देख के ही आपको जो है जो आपके अफसर होंगे ऑफिसर्स होंगे जो आपके ऊपर होते हैं वो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो इसका आपको तुरंत लाभ लेना चाहिए। दूसरा, जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या है, आपको जैसे आप बाहर कार्य कर रही है, कई देखिए अब गृहिणियाँ मतलब अगर हम बाहर ऑफिस में कार्य करते हैं तो आपको अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रही है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके नई जानकारियाँ आगे क्या है उस क्षेत्र के बारे में, आगे क्या हो रहा है, क्या ट्रेड चल रहा है वो क्षेत्र में, कितनी अपॉर्चुनिटी है कितनी नहीं है, या कैरियर से जुड़ी आपको स्थायी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। और जोखिम हमेशा उठाने की कोशिश करनी चाहिए सखियों, या आपको अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए, अगर आपके बच्चे टीनेजर से बड़े होके कैरियर के हिसाब से कॉलेज में जा रहे हैं या कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, तो उन्हें भी आपको ये समझाना चाहिए कि बिना जोखिम के सफलता मुश्किल है। अगर आप सोचेंगे कि आप एक ढाट मेंढक बने हुए बस एक ही जगह रहेंगे, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना है, जो चल रहा है चलने दो, तो देखिए जीवन वैसे भी कट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं सखियों। जीवन काटने के लिए ज़रूरी नहीं आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप वैसे भी आपका जीवन कट जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, कुछ बड़ा करना है, आपके बच्चे हैं आपके हस्बैंड है, अगर उनको भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो उनको आप ये सोचिए कि लाइफ में हमेशा हमें जो है रिस्क लेनी पड़ती है। अगर आपने कुछ आज रिस्क ली है तो आगे जाके आपको सफलता मिलेगी, बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलेगा। और किसी भी अवसर को परखने के बाद सोच समझ कर कदम उठाइए, ऐसे नहीं कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई सकती हूँ तो आपने कहा कि चलो मैं ठीक है मैं कर लूँगी और फिर बाद में हाथ हटा दिया तो भी आपका नुकसान है, लोग आपको मतलब अच्छी जो आपके व्यक्तित्व के ऊपर सवालिया निशान उठाने लग जाते हैं कि ये तो काम ही नहीं।

कर रही है, ये तो बीच काम में इसने हमें छोड़ दिया। इसके साथ साथ किस जिस भी क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो भी मिल रही है, उसके लिए आपको नेटवर्किंग आपकी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आपको लोगों से जुड़ना होगा, मजबूत पेशेवर और ऐसे संबंध बनाने होंगे कि जानकारियां आपको मिले, अवसर दिलाने में वो आपको मदद करे, तो इससे आपको ही फायदा होगा। और ये चीज़ें जो होती है ना, ये आप अपने बच्चों को भी सिखा सकती है, ताकि वो भी अगर आगे किसी कार्य क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें भी आप बता सकती है कि ये सब आप करोगे तो आपको आगे जाके सफलता ही मिलेगी। इसके साथ समय प्रबंधन, समय प्रबंधन सच में बहुत ज़रूरी है। चाहे आप घर पे काम करती हो या बाहर काम करती हो, चाहे अवसर का लाभ आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फिर भी समय प्रबंधन आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी अवसर की एक निश्चित टाइम लिमिट होती है। देखिए, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट भी दे रहे हैं ऑफिस में, तो भी आपको एक टाइम लिमिट देंगे कि भाई आपको इतने टाइम में ये काम करना है, तो आपको क्या है कि उस समय उस काम को करना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके ऊपर प्लानिंग, प्लॉटिंग, जो भी है आपको योजनाएं हैं वो सारी कुछ बनानी चाहिए। अगर आपको घर के अंदर भी सखियों में कहते कोई जिम्मेदारी दी है, तो आपको अगर कह दिया कि भाई ये जिम्मेदारी है, तो आपको उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा देना चाहिए एक सही टाइम तक। ये नहीं कि अब आलस खा लिया, छोड़ दिया कि नहीं अभी मैं बाद में कर लूँगी या अभी नहीं करूँगी। जैसे आपको कोई बिल विल पे करने के लिए कह दिया, आपने ध्यान नहीं दिया और बाद में पता चला बिल की डेट चली गई, या आपको ऑफिस में कोई काम दिया, अरे अभी तो 6 महीने पड़े, अभी तो 3 महीने पड़े इसको पूरा करने में, चलो आ रहा बाद में करेंगे। क्योंकि अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आपको कभी काम नहीं मिलेगा, कभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि सही समय पर सही कार्य करना ही सफलता की कुंजी है। तो ये तो थी सखियों की अवसर को लाभ उठाने की बातें। और ये अवसर के लाभ उठाने की बातें जरूरी नहीं कि ऑफिस के लिए ही जरूरी है या बाहरी क्षेत्रों के लिए भी जरूरी है, घर के लिए भी जरूरी है। अगर आपको घर में भी अपना सबका चहेता बनना है ना, तो आप अपने अवसरों का लाभ उठाइए, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए, फिर देखिए आप घर में सबकी चहेती बन जाएंगी। आप सखियों, आगे भी आपसे बातें करती रहूंगी, आगे भी कुछ ऐसे विषय है जिनसे आप पे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक भजन।

0: देवी उलंगना
1: उलंगना
0: मैं तन मन रंगना
1: रंगना
0: तन मन रंगना।

सखियों, अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल की आवाज़ में ये भजन। सखियों, अब हम बात करते हैं हम गृहिणियों की। हर बार हम अपने कार्यक्रम के जरिए हम हमारी सखियों को कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताते हैं जिनका लाभ हमारी जो सखियां हैं वो लें। तो आज हम इसी कड़ी में हम सभी सखियों को मैं बताने जा रही हूँ उज्ज्वला योजना के बारे में। जी हाँ सखियों, ये योजना जो है ये बहुत ही अच्छी योजना है और सबसे ज़्यादा ये है कि ये योजना हम सखियों के लिए ही है। जो भारत सरकार द्वारा ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं मतलब जिनको LPG कनेक्शन नहीं मिला है

उन महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। अब सचिव, इस योजना को चालू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था सरकार का? मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था, आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखेंगे तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रामीणों में आज भी एलपीजी कनेक्शन नहीं था, और दिन भर महिलाएं जो है लकड़ी के चूल्हों पे कोयले के ऊपर मतलब जाके खाना बनाती थी, जिसका धुआं जो है वो महिलाओं के ऊपर जाता था, महिलाओं के अंदर जाता था, उनके फेफड़े खराब होते थे, उनका स्वास्थ्य खराब होता था, और उन्हें किसी न किसी कई तरह कोई गंभीर रोग जो हो जाता था। अब महिलाओं के इस मतलब जो समस्या को देखते हुए सरकार ने सोचा कि इसका एक ही उपाय है कि महिलाओं को कनेक्शन दिए जाए। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो एलपीजी कनेक्शन नहीं ले पाते, इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में भी जो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, जिनके पास कच्चे मकान हैं, और जो मतलब आप देखिए कि उसके साथ ही साथ वो लकड़ी के चूल्हों पे जो है खाना बनाते हैं, तो इन लोगों के लिए, इन महिलाओं के लिए सरकार ने कहा कि इनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, महिलाओं को स्वच्छ रसोई गैस ईंधन दें, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें और महिलाओं को सशक्त बनाएं, ताकि महिलाएं सिर्फ दिन भर इसी में ना रहे। जितना गैस, अगर गैस से देखिए कितना जीवन जो है ईजी हो जाता है। आप देखिए अभी कुछ समय पहले जब एलपीजी कनेक्शंस की कमी आ गई थी तो हमारे जो किचन है वो कितना अस्त व्यस्त हो गया था। तो आप सोचिए ग्रामीण महिलाएं जिनके पास एलपीजी कनेक्शन कई सालों तक नहीं था, ऐसी महिलाएं शहरी क्षेत्रों में, ऐसी मतलब बीपीएल कार्ड धारक, निम्न तबके, निम्न जो वर्ग की जो महिलाएं होती है जो मतलब मजदूरी करती है, करती जिनके पास खुद का कोई कनेक्शन नहीं होता, उन लोगों की क्या हालत होती होगी। अब सखियों, अगर आपके पास, अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है या आप खुद इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो इसकी कुछ विशेषता है या इसके कुछ लाभ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो आप और अच्छे तरीके से जो है एलपीजी कनेक्शन को ले पाएंगे। इसके लिए क्या करना है आपको, बिना किसी सुरक्षा के मतलब आपको इसमें देखिए जमा राशि के आपको एलपीजी कनेक्शन मिल जाता है। उस एलपीजी कनेक्शन में देखिए आपको सिलेंडर भी मिलेगा, एक रेगुलेटर मिलेगा, पाइप मिलेगा और गैस बुक मिल जाती है, और ये पहले से ही भरा हुआ सिलेंडर चूल्हा आपको एक बार का निःशुल्क प्रदान सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी तरह से हो गई। इसके साथ सब्सिडी जो होती है वो भी आपको मिलती है सरकार द्वारा। उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी होते हैं उनको प्रति सिलेंडर पे 300 रुपये की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, ये बहुत ही अच्छी बात है सखियों। इसके साथ ही साथ इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यही है कि इस योजना के माध्यम से देश भर में अब तक जो 10 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं उनको इसका तो लाभ मिल चुका है, उसके अलावा भी कुछ और भी महिलाएं हैं उन सबको इसका लाभ मिले जिनके पास एलपीजी कनेक्शन का कनेक्शन नहीं है। और अब आप सोचेंगे कि कैसे हम इसमें आवेदन करें, किस तरीके से हम इसके हकदार बन सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आवेदक है वो सिर्फ महिला होनी चाहिए, ये तो बहुत ही, ये तो आप सबके लिए अच्छी बात है, जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और आवेदक का जो परिवार है वो बीपीएल हो, कार्ड धारक हो, एससी एसटी अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के जो हिस्सेदार होना चाहिए। आप में से कोई भी या आपके आसपास कोई भी ऐसी महिला है जो इसमें से किसी भी वर्ग में आती है, आप उसे इस योजना के बारे में ज़रूर बताइए। अगर वो इसका लाभ ले चुकी है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर वो अभी भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं तो मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगी सखियों कि आप जाइए और अपने आसपास की इन महिलाओं को बताइए कि सरकार ने आपके लिए कितनी अच्छी योजना लागू की है, आप इसके लिए मतलब आवेदन कीजिए। और इसके लिए कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है सखियों, आपके पास आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड होना चाहिए, आपके बैंक का जो खाता है वो पासबुक जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए, जो भी बैंक का खाता है आपकी पासबुक है उसका और आधार का जो है वो लिंक होना चाहिए, और आपका निवास प्रमाण पत्र या आपका पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए रहता है। और आप इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसमें भी आप जाके आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि ऑनलाइन कैसे आवेदन करें, तो कुछ नहीं करना है आपको, अपने जितने भी आवश्यक दस्तावेज जो मैंने बताए हैं उनको आप लीजिए, और अपने नज़दीकी जो भी एलपीजी वितरण एजेंसियां हैं जो एलपीजी गैस का वितरण करती है उनके पास जाइए, उनसे संपर्क कीजिए, वो अपने आप आपको एलपीजी जो आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर आपका जो है रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। तो उम्मीद करती हूँ सखियों आज जिस योजना के बारे में मैंने आपको बताया है आप उस योजना का लाभ जरूर लेंगे। और अब सखियों बातें तो बहुत होती रही, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा फिल्मी भजन।

0: रमन दर्पण कहलाए, तो रमन दर्पण कहलाए।
1: तो क्यों अभी आप सुन रहे थे काजल मूवी का ये प्यारा सा भजन। सखियों हमने बात की आज जैसे कि किस तरीके से महिलाएं, जैसे मैंने विषय पर बात की थी कि अवसरों का हमें लाभ उठाना चाहिए और बाहर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का जो है वो लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। अब बात अगर सखियों करें हम घर की, तो देखिए कई बार कुछ गृहणियाँ, आप देखिए आज का समय जो है सब हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं बाहर जाके कुछ करूं, या हर कोई यह चाहता है कि घर पर भी हमें कोई ऐसा कुछ स्रोत मिल जाए जिससे हम घर पर भी आमदनी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बाहर नहीं जा पाती है या आप घर की जिम्मेदारियों में इतनी निपुण, मतलब घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर ही सारी कुछ है घर, तो आप बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकती। तो इसके लिए आप घर के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं ना, उसमें भी आप पेशेवर रूप से अच्छी खासी आमदनी शुरू कर सकती है। जी हाँ सखियों, जरूरी है, क्योंकि टैलेंट देखिए सबके अंदर होता है, बिना टैलेंट तो कोई आगे नहीं होता। भगवान ने सबको किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ गुण डाले ही है। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो मैं इसीलिए घर के कामों में ही पूरी हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। घर के कामों से भी आप, घर के रोज़मर्रा के कामों से भी आप बाहर आगे जा कर बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे आप देखिए खाना बनाना, खाना बनाना हर गृहिणी का एक, मतलब सबको आता है।

और सबके हाथ में एक अलग स्वाद होता है। ऐसा नहीं है कि अब आप देखिए बाहर आप सोचते हैं कि मैं खा, इतने सारे लोगों ने टिफिन सर्विस खोली। कई बार हमारे अंदर ये भी निराशावादी बातें आ जाती है कि अब आजकल तो टिफिन सर्विस हुई या क्लाउड किचन हुआ, घर से खाना भेजना हर कोई करता है, तो फिर मैं करूँगी तो इससे मुझे क्या मिलेगा। तो सच्चों इसमें देखिए एक बात मैं आपको कहूँ कि हर किसी को भगवान ने गुण दिया है, सबके हाथों में एक अलग स्वाद होता है। आपका खाना दूसरे के खाने से कुछ ना कुछ, आपके पास कुछ ऐसी ट्रिक होगी, आपके हाथों में कुछ ऐसा स्वाद होगा जिससे आपका खाना उसके खाने से अलग हो जाएगा। सिलाई है, अगर आपको सिलाई आती है तो आजकल तो सिलाई का देखिए कितना क्रेज चल रहा है, सिलाई को भी आप पेशेवर रूप से तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल सिलाई आती है तो आप तो सिलाई का कोर्स कर लीजिए, और ज़रूरी नहीं कोर्स के लिए अगर आपको लगता है कि मैं बाहर नहीं जा के कर सकती, तो आजकल तो ऑनलाइन मोबाइल के ज़रिए भी आप कोर्स घर पे बैठे सीख सकती है और आप सिलाई में भी पेशेवर रूप से कमाई कर सकती है। इसके साथ बच्चों को पढ़ाना, ये देखिए अगर आप पढ़ी लिखी हैं लेकिन आप बाहर काम नहीं कर पा रही है, तो आप घर पर भी छोटे बच्चों की ट्यूशन लीजिए। शुरुआत आप छोटे बच्चों से कीजिए, जब छोटे बच्चों को पढ़ाने में आप कंफर्टेबल हो जाए, आपका टाइम सेट हो जाए, तब आप धीरे धीरे बड़े बच्चों को बुलाइए। क्योंकि छोटे बच्चों का तो देखिए कोर्स बेसिक होता है, आप चाहे तो उसको आराम से घर पे बैठ के बच्चों को पढ़ा सकती है और छोटे बच्चों की नींव को मजबूत कर सकती है। लेकिन बड़े बच्चों को अचानक से अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं है और आप बड़े बच्चों को पढ़ाने लग गए, तो उनका कोर्स भी लेंदी होता है, फिर उन्हें पढ़ाने में आपके पास समय भी वैसा होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ बेहतरीन तरीके हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको खाना बनाने के लिए टिफ़िन सर्विस की बात की थी, तो आप चाहे तो टिफ़िन सर्विस है, होम कैटरिंग है, वो भी आप कर सकती हैं। आपको बहुत ही अच्छा खाना बनाना पसंद है तो आप घर से बने ताज़े खाना, और ज़रूरी नहीं खाना सके हो, आजकल तो देखिए नाश्ते की भी बहुत डिमांड है। अगर आपने कुछ, आपको लगता है कि दिन भर आपसे मतलब क्लाउड किचन नहीं चल सकता या दिन भर आप टिफिन सर्विस नहीं दे सकती, कोई बात नहीं, आप कुछ स्पेशलिस्ट चीज़ें हैं जो आपको लगता है ये मेरी जो है ये जो भी खाएगा वो मुझसे दोबारी बार मांगने आएगा, आप उसके बारे में सोचिए। नाश्ता होता है आजकल, आप नाश्ता भी बहुत डिमांड पे है, ऑन डिमांड आप नाश्ता बनाइए और सिर्फ नाश्ते को ही सेल कीजिए, देखिए आपकी कितनी अच्छी सेल होगी। तो इसके टिफ़िन डिलीवरी भी आप शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर आसपास जाइए, बाहर मार्केट में निकल के देखिए, आसपास आपके अगर हॉस्टल है, पीजी है, कामकाजी लोग हैं, तो ये खुद अच्छे खाने के लिए तरसते हैं, खुद घर के खाने के लिए तरसते हैं, तो आप इनसे संपर्क करके अपने जो टिफ़िन सेंटर को है, अपने खाना बनाने की कला को आगे बढ़ा सकती हैं। दूसरा आता है सखियों सिलाई, जैसा मैंने आपको कहा सिलाई है, तो आजकल देखिए सिलाई को भी, अब सिलाई का भी एक बड़ा लेवल हो गया है, बुटीक हो गया है, तो आपको कपड़ों की सिलाई है, कढ़ाई है, डिज़ाइनिंग का काम है, ये घर से ही आप शुरू कर सकती हैं, बहुत ही अच्छा काम है। आपको अगर बेसिक सिलाई आती है तो आप घर से ही बैठ के ये सब चीज़ें ऑनलाइन कोर्स करके, अच्छे बुटीक के कोर्स कर लीजिए, डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लीजिए और घर से ही आप काम शुरू कीजिए, बहुत ही अच्छा काम होता है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको आमदनी भी हो जाएगी। और स्थानीय ग्राहकों के अलावा शुरुआत आप कीजिए स्थानीय ग्राहकों से, और सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए अपने आप से। जी हाँ सखियों, कोई भी काम करने के लिए आप शुरुआत अपने आप से, अपने घर से कीजिए। अगर आप ब्लाउज सिल रहे हैं तो आप अपने अपने परिवार के लोगों के पहले ब्लाउज सिल के देखिए कि आपकी कितनी अच्छी होती है कलाकारी, आप उस पर कीजिए। अगर आप सूट सिल रही है या कुछ लहंगा वहंगा बना रही है, तो पहले आप घर के लोगों पे अपने ऊपर कीजिए, फिर आप स्थानीय लोगों से बात कीजिए, आसपास के जो अपने आस पड़ोस के लोग हैं उन महिलाओं से बात कीजिए, उनके कब जो ऑर्डर लीजिए, और जब आप एकदम सक्षम हो जाए तब आप अपने आप बुटीक के लिए आप थोक में सिलाई का काम ले सकती है, अपना बाहर भी एक बुटीक खोल सकती है। इसके अलावा ट्यूशन जो मैंने आपको बताई थी कि आप अगर किसी एक विषय में भी माहिर है ना, तो भी आप मतलब अच्छे से ट्यूशन ले सकते हैं। देखिए आजकल गणित विज्ञान के अलावा आप सोचिए हिंदी की भी ट्यूशन ली जाती है सबसे, क्योंकि कई बच्चों को मतलब जो एक्सपर्ट तो गणित पढ़ा देंगे, विज्ञान पढ़ा देते हैं, लेकिन हिंदी संस्कृत इसमें बच्चे आजकल वीक हो रहे हैं, तो आप चाहें तो हिंदी संस्कृत इसकी भी आप घर बैठे कोचिंग ले सकती हैं और ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी विषय में बहुत माहिर हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है और आप किसी कारण से बाहर नहीं जा रही सकते हो, तो आप ऑनलाइन भी जो है पढ़ाई कर सकते हैं। और ये सब तो हैं, इसके अलावा गृहिणियों को जो कुकिंग तो मैंने बताई थी, उसके अलावा देखिए अचार होता है, पापड़ होता है, केक होते हैं, बेकरी आइटम होते हैं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। किसी को अचार इतना अच्छा बनाना आता है, किसी को मसाला घर के बने मसाले एकदम से पता रहते हैं कि कितनी क्वांटिटी का कैसा मसाला होता है, घर के मसालों की भी बहुत डिमांड है। और पापड़ किसी को बहुत अच्छे बनाने आते हैं, कि कोई सखियाँ
बेकरी के काम को बहुत अच्छे से सही कर सकती है। कोई सखियों को देखिए तो खाना भले उनका ठीक ठाक हो, बट वो केक में मिठाइयों में माहिर होती है। तो आपके पास जो आपके गुण हैं, आप उस गुण को देखिए और उस गुण के हिसाब से आप अपना काम चुनिए। और शुरुआत जो होती है सखियों, मैंने हमेशा कही, अगर आपको अचार है, पापड़ है, केक है, कुछ भी बनाना है, शुरुआत पहले आप घर पर बनाइए, घर के लोगों को चखाइए। जब घर पे आपको हमेशा पॉजिटिव आए, उसके बाद आप आसपास के लोगों को चखाइए, जब उनके पास से अच्छा रिजल्ट आए, वो ऑर्डर लेने लग जाए, तब आप बल्क में बड़े ऑर्डर लें। एकदम से आपने अगर बड़े ऑर्डर लेने चालू करें तो मार्केटिंग के हिसाब से आपके लिए बहुत ही ख़राब होगा। उसके अलावा सखियाँ, एक और चीज़ जो है आजकल मैं आपको बताऊँ, सोशल मीडिया का चलन हो चुका है। और सोशल मीडिया में आप देखिए क्या होता है कि आप खुद देखते हैं कितनी सारी महिलाएँ जो इन्फ्लुएंसर हैं और कई गृहिणियाँ हैं जो घर पे साफ सफाई कैसे करना, कुकिंग कैसे करना, घर बैठे ही मतलब क्राफ्टिंग का काम कैसे करना, सिलाई का काम कैसे करना सोशल मीडिया में डालती हैं। तो आप उसमें भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको अगर कोई बेचना नहीं है तो आप घर बैठे ही अपने कामों को, जो रोज़मर्रा के काम है, उसके आप वीडियो बनाइए, ब्लॉगिंग कीजिए, और वो धीरे धीरे आपको उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन एक टाइम पर आपकी सफलता मिलेगी, एकदम से नहीं कि आपने आज एक ब्लॉग डाला, आज आपने एक वीडियो डाला और कल से ही आपकी कमाई चालू हो गई या लोग आपको जानने लगे, नहीं। इसमें समय बहुत लगेगा, लेकिन अगर एक आपको अलग सी प्रसिद्धि चाहिए, लोगों के बीच में अलग से पहचान चाहिए, तो आप ये काम भी कीजिए, ये भी बहुत अच्छा काम है। और उसके साथ साथ अगर आपको कंप्यूटर की समझ है, इंटरनेट की भी समझ है, तो सबसे अच्छा काम मैं बताऊँ सकती हूँ, वर्क फ्रॉम होम भी होता है। आप घर पर ही वेबसाइट पर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग करना, डेटा राइटिंग करना, ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर की, इंटरनेट की समझ है, तो आप ईमेल कर सकते हैं। आज देखिए घर बैठे लोग सेल्स का काम कर लेती हैं महिलाएं। आप जो बाहर की इंडस्ट्रीज हैं उसमें मार्केटिंग में कम से कम अगर 100% का रेशो रखें तो 70-75% महिलाएँ होती हैं जो घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करती है, घर बैठे सेल्स देखती है, घर बैठे सारा काम करती है, क्योंकि उन्हें इंटरनेट की समझ है, कंप्यूटर की समझ है। वो मेल को आजकल देखिए, मेल के जरिए, AI, ChatGPT के जरिए आप किसी भी थ्रू से इन चीज़ों को सीख सकती है। अगर आपको सीखने की भी ललक है, ऐसा है कई श्रेणियाँ सखियाँ के कि हम नहीं, हमें नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप घर बैठे पहले इन चीज़ों को सीखिए और उसके बाद आप अपने घर की आमदनी में अपना हाथ बटाइए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे नुस्खे थे, या मैं आपको कहूँ कुछ ऐसे टिप्स थी सखियों, ऐसे तरीके थे। अगर आप इनको अपना लें तो आप घर पे ये मत कहिए कि हम सिर्फ गृहिणी हैं, आप एक मतलब बिजनेस वूमन बन सकती हैं, आप एक स्मार्ट वूमन बन सकती हैं, जो एक मल्टी टैलेंटेड वूमन बन सकती हैं, जो घर के काम भी कर रही है बखूबी, बाहर के काम भी कर रही है और घर की आमदनी में भी अपना सपोर्ट जो है वो दे रही है। अब सच में बहुत ज़्यादा बातें हो गई है, तो क्यों ना सुने एक प्यारा सा गीत।

पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से

0: will experience hot and humid weather conditions till tomorrow. Benchmark domestic equity indices erased their early losses and were trading on a flat note during the afternoon session today. The Sensex added 20 points to 77,589, while the Nifty dipped 7 points to 24,200 when reports last came in. In the global crude oil market, Brent crude was trading 3.3% up at $78.51 per barrel when reports last came in. In tennis, top seed Italy's Jannik Sinner retained his Wimbledon men's singles title, beating second seed German Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in the final at the All England Club last night. This is Sinner's second consecutive Wimbledon men's singles title and his fifth Grand Slam crown. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court says determination of citizenship and foreigner status must be carried out through a fair, lawful and reasonable process. Sets aside Guwahati High Court's decision declaring 27 appellants as foreigners. Apex Court seeks status report from the SIT probing alleged misappropriation of donations in Ram Janmabhoomi Temple. President Draupadi Murmu takes cognizance of matter regarding Jharkhand workers affected by ammonia gas leak in Tamil Nadu, directs immediate action. Mortal remains of 15 Indians who died in Vietnam boat tragedy to be brought back home tonight by a Vietnam Airlines flight. Iran strikes U.S. military bases in Jordan, Bahrain and Kuwait in retaliation to U.S. attacks on its military targets. And in women's cricket, hosts England to resume their second innings at 130 for 6 against India in historic one-off test at the Lord's. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Jagriti Sharma. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जाँच कर रहे विशेष जाँच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय

0: ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्र गिरी है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया। 6 नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने की 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमेरिका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, UK, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं।

0: सकती हैं।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
2: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शो केस में नहीं रखना, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
1: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम

0: आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 101.8 MHz पर आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, जिन्हें आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं सिंदूर फिल्म का गीत, आवाज मोहम्मद अजीज की, आनंद बख्शी की रचना है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: चाहे खुशी है चाहे गम है, ये आंसू है या शबनम है, ये आंसू है या शबनम है, प्यार है कुछ भी एक मौसम है, और मौसम का क्या एतबार, एतबार बस जर सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार मौसम चार मौसम चार

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्याम चित्तर की। राजकवि इंद्रजीत सिंह और तुलसी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं।

0: की धूप में साथी बने हैं।
1: अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तसव्वुर में साथी बने हैं। अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए फिर हाथ की धूप में साथी बने।

तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास। मत हो मेरी जाओ दास दिल के झरोके में तुझको बिठा कर।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार। सुनने वाले सभी सखियों, श्रोताओं और सखा भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और ममता जी आपको भी नमस्कार।
1: जी देखिए दीपा, कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियां आती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बस मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कई बार दो राह पे हम खड़े होते हैं तो निर्णय की क्षमता लेने में बड़ी असुविधा होती है, समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, क्या करें। कई बार सड़कों पर भी ऐसा होता है कि हम खड़े होते हैं कि रास्ता राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा। हालांकि अभी गूगल नाम के मास्टर ने बहुत आसानी कर दी है कि आपको मैप के जरिए आप सही रास्ते पर चले जाते हैं, बस की नेट चल रहा हो आपका। तो ये जो मन जो अधीर हो जाता है, इस मन को साधने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं।
0: बिल्कुल, और इसी बारे में बात भी करेंगे हम ममता जी आज की, क्या किया जाए जब मन बहुत बेचैन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या कभी गलत हो गया है आपके साथ तो हमारे सभी सुनने वाले बताएं कि क्या हुआ था, कभी कुछ गलत उनके साथ हुआ है या कहीं उन्होंने मन को शांत करके फिर बताई है बात, या कुछ ऐसा निर्णय को थोड़ा सा टाला है और बाद में उसको लिया है, ऐसा कुछ अनुभव उनके साथ अगर रहा है तो हमारे साथ अवश्य,
1: मतलब किन परिस्थितियों में वो अधीर हो जाते हैं और किस तरह से वो निर्णय ले पाते हैं अपने जो भी कार्य हैं। तो हमारे श्रोता बताएं विविध भारती की फेसबुक पेज पर आकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के

0: वो पेज पर पहुंच जाएंगे और सिर्फ इसी के बारे में उन्हें नहीं टाइप करना है बल्कि बारिश और लकड़ी के फर्नीचर, ये हमारा अगला मुद्दा है, अगला विषय है जिस पर उनकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा कि बारिश में लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो खराब हो जाते हैं
1: जी,
0: कई बार दरवाजे तक बड़े टाइट हो जाते हैं
1: जी बिल्कुल, और कहीं पे दीमक लग जाती है, कहीं खुल जाते हैं या कहीं टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजों को हम देखते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, हम तो यहाँ विचार विमर्श करेंगे, चर्चा होगी, आपको भी क्या लगता है आप वो भी बताइएगा।
0: मैं नहीं, हमारे श्रोता,
1: हमारे श्रोता
0: जी। और इसके अलावा जब सुबह सुबह उठते हैं तो मन में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या बनाया जाए
1: जी।
0: तो इस मुश्किल की आसानी के लिए पराठे, कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, और आप भी बनाती होंगी कई तरह के पराठे, दो चार पराठों के नाम बताइए आप।
1: जी, मूली के पराठे होते हैं, फूल गोभी के पराठे होते हैं,
0: पत्ता गोभी,
1: तो पत्ता गोभी की भी थी,
0: लौकी का पराठा भी बनता है,
1: लौकी का भी होता है,
0: प्याज का पराठा
1: जी, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अचार का मसाला लगा के वैसा भी,
0: और सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम श्रोताओं से जानना चाहेंगे पंजाब के भरवा पराठे कैसे होते हैं, अगर उन्हें जानकारी है, अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे पंजाब के भरवा पराठे के बारे में
1: जी,
0: कि कैसे बनते हैं। और कथा सुधा जो हमारा, हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा भाग सुनवाएंगे, दो बहने का। तो फिलहाल एक गाना सुन लें हम,
1: चलिए।

अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती

Thank you.

जब जुल्मों का हो सामना तब तुझी हमें कामना, वो बुराई करे हम

0: बदले और बदली तेरे तले ताके हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम।
1: ममता जी, पिछले सोमवार को हमने सुना कहानी, प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। इसका हमने पहला जो कड़ी उसकी सुनी थी, आज हम सुनेंगे उसकी दूसरी कड़ी।

0: कड़ी और ये अंतिम कड़ी होगी। तो चलिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। पिछली कड़ी में आपने सुना,
2: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है।
3: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया कौन जाने, जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो, उसे ये स्वांग मुबारक रहे। मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
2: राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
4: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
2: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
3: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है।
2: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी।
1: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? छानबीन कैसे करेगी, असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी।
3: मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाए तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी उसूल परवरी धरी रह जाएगी, और तब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुवत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दूं। रोकना तो दरकिनार, मैं खुश होऊंगी, शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूँ, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी, और जूही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।
2: आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वही बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा,
4: इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी, 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लेना फिर चली जाना, मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी।
2: रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए? बोली,
3: अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ अभी नहीं।
4: बहन क्या रात भर भी नहीं ठहरोगी?
3: नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी।
4: अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी, मैं कार भेज दूंगी। कार
3: अब खुद कहला दूंगी। हाँ
4: अरे बहन, तुम्हें याद न रहेगा, साल भर तो हो गया।

0: भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाए तो चलूं। एक शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो।
1: घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला।
2: इतने में राम दुलारी के शोहर मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वयं हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी न था। दुआ देकर बोली,
1: कैसे हो गुरु सेवक? आज यहां न आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती भला?
2: गुरु सेवक हंसकर बोला,
3: बजा फरमाती है भाई, उल्टी शिकायत। कभी आपने बुलाया और मैं ना गया, ऐसा हुआ है?
1: शिकायत तो सही है, वैसे मैं ना जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। कभी भी आओ, वो भी तुम्हारा ही घर है।
3: अब मान गया दीदी, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रही है।
1: नहीं देखो, राम दुलारी भी कह रही है, लेकिन आज फुर्सत बिल्कुल नहीं है। फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे ना, अभी चलती हूँ।
0: मैं तो कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं दीदी।
2: दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी।
1: नहीं नहीं, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे, फिर आऊंगी।
2: आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला,
3: दीदी मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया है। 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा।
1: हाँ, राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो। देखो जरा हाथ पैर संभाल कर रहना। मैं
3: अब देखिए, मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूं। अब दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। आप ही बताइए, ईमान खो के पैसे मिले तो क्या?
1: सही कह रहा,
3: ऐसी दौलत पे तो मैं लानत भेजता हूं। और आंखें किसकी बचाऊं? सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है नहीं। हां उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभालने लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता दीदी। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे।
1: अच्छा,
3: मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था, मुझे 100 रुपए पर रखा और एक ही महीने में 250 कर दिया।
1: अच्छा,
3: आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया।
1: अच्छा एक बात ये बताओ, काम क्या करना पड़ता है?
3: वही मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना।
1: अच्छा,
2: रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी, उसके शोहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी, मगर उसने गुरु सेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया और उमानाथ तो मुखातिब ही न हुए।
1: मेरा घर, ये घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा है, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, ये 2-4 टूटी कुर्सियां और ये लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटे, बस यही है मेरे घर के बिसात। आज सुबह तक तो इस घर में मैं बहुत खुश थी, लेकिन आप इस घर से मतलब दिलचस्पी न रही।

0: लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इस इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा,
1: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वही रह जाती, आखिर एक महराजन क्यों नहीं रख लेते? या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे?
0: उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ ना आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसने हमेशा यही कहा,
1: अब आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? हाँ, आप भी 4-5 रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? और हाँ, ये रकम जो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा, है कि नहीं?
0: वही रूप कुमारी आज इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए उमानाथ बोले,
2: महराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा है।
1: तो ला कर क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते? तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महराजिन लाने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहां मिलेगी? महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलिया लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाते। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी। तुम्हारे लिए ये 75 ही बहुत हैं। तुम नाहक ही मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो भाई अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से।
0: यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपने दानिश में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
2: अब मेरी तनख्वाह कम है जरूर, मगर ये मेरे बस की बात तो है नहीं। दिल लगाकर अपना काम करता हूं, अफसरों को खुश रखने की हमेशा कोशिश करता हूं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए तो वो खुश हैं। और अब मैं क्या करूं?
0: रूप कुमारी की नाराजगी का राज तो उन्हें मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुशनसीब है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। उसे ये मौका मिल गया, दूसरों को ये मौके कहां मिलते हैं? वो तहकीक करेंगे कि वाकई उसे 500 रुपये मिलते हैं या महज गप है। बिलगरज मिलते होंगे तो इस पर क्या रूप कुमारी को यह हक है कि उन्हें निशाना या मलामत बनाए? अगर वो इसी तरह रूप कुमारी से ज्यादा हसीन खुश सलीका औरत देखकर उसे कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी हसीन है, शीरी जबान है, खुश मजाक है, बेशक, लेकिन इससे ज्यादा हसीन, ज्यादा शीरी जबान, ज्यादा खुश मजाक औरत दुनिया में मालूम नहीं है। एक जमाना था जब उनकी नजरों में रूप कुमारी से ज्यादा हसीन औरत दुनिया में न थी, लेकिन वो जुनून अब बाकी नहीं रहा। जज्बात की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आए उन्हें एक मुद्दत गुजर गई।

भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए, सपनों से आगे कहाँ जिंदगी कैसी है बहेली भाई। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।

0: सच है बहेली हाय हो, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गाना था और दीपा जी घड़ी की ओर देखिए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम श्रोताओं की टिप्पणियां सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली, और कहा जाता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मतलब मन में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है, क्या कहेंगे दीपा जी आप?
1: ये बात सही है कि जब मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना।
0: अब जी, हमारे जी, बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसके विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है और भी कुछ लिखा है,
1: बिल्कुल
0: आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
1: ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ता, जो गुणवत्ता है वो घटा सकता है, और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है।
0: और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं जिसके कारण बाद में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में ले लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए।
0: और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है, मन में उत्पन्न हो रहे विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह है, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी, अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम

0: बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें, तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ ना सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं। वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें।
1: बिल्कुल,
0: तो देखिए
1: जी,
0: आप
1: थोड़ा सा हम अगर
0: सोच सकते हैं,
1: सोच
0: सही तरीके से
1: सही, और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं। फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं, उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।
0: अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे और हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना

0: ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, के कहीं पे सैर के लिए निकल जाना, या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहाँ पे कि आपको अच्छा लगे, मिलके लोगों के साथ व्यायाम करना, या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें। अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं, हम एक थोड़ी सी अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरा सा हलचल हुआ या कुछ उठा पटक हुई, तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणियां भी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है, मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित है, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है, और जैसे कि तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु सवेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं, और यही प्रतिकूलता को सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पे जाइए जहां से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें, तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे, तो घर में भी वही चीजों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, कुछ व्यायाम करना जरूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना जरूरी है, और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय लेने का किस्सा मैं बताना चाहूंगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी, और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के जो टीचर्स थे वो भी राजी थे, सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया, और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा इंतजार करो, इंतजार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता है।
0: और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है, वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपनी सीनियर के साथ किसी बात को लेकर बहस होने वाली थी, उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की, तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था। हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
1: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है, और बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर बारिश हो ही नहीं रही, लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से। लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयां होती है तो बुराइयां भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियां भी लेकर आती हैं। जैसे कि बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है खासतौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था
0: जी,
1: और कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर्र की आवाज करते हैं, चर्र जो, और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाजा खूब जोर से आवाज करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है।
0: हाँ,
1: तो इसलिए इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे, और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगी, तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है, और किसी को बुलाकर, किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए।
0: ठीक भी कराना चाहिए, और कई बार ममता जी हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसे कारण है, जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सूख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी में दरार, नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के, और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है।

0: और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है लकड़ी की, चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है, और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहां पे आप देखेंगे कि नुकसान ज्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर है आप उस कमरे के।
1: और हमारी एक सखी है जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोछें। सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए, और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है उस जेल के पैकेट का उपयोग करें, या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो पोछ देती है, सारे अलमारी जितने टेबल हैं कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी उसमें।
0: बिल्कुल सही कहा, और इन सब चीजों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें खासतौर पे बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है, तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए, और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है, और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां और उपाय दिए गए हैं, और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें, और इन्होंने लिखा है कि केमिकल से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, और अब हम क्या कर सकते हैं,
1: गाना सुनवा सकते हैं।
0: चलो
1: ये रहा गाना।

0: प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे,
1: बिल्कुल,
0: कि किस तरह से हिफाजत करें, लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में,
1: और तो जब बहुत शौकीन होते हैं कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के, और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में, और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है, तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही है। और जो फंगस दिखाई देता है, खास तौर से सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती, धूप कहाँ से लाएंगे आप?
1: बिल्कुल, लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती है, मदद करती जो दी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए, क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी, खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो।
0: और फर्नीचर के लिए सही कवर भी जरूरी होता है, कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें की हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए। और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखा कर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें, तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी, तो जो नमी है वो
1: बिल्कुल
0: कम हो जाती
1: है। और बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है तो हम डिह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में कपूर की टिकिया आप अलमारी में रख लीजिए, या नीम की सूखी पत्तियां भी, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खासतौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिए ना, फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी है जितने भी हमारे पास ये जरूरी सामान और कीमती चीजें, इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
0: और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियां होती हैं, टेबल होती है, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं?
1: खाना खाते हैं।
0: तो आज किस खाने की बातें करने वाले?
1: आज हम चलेंगे पंजाब की तरफ, जहाँ पे की भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के, बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
0: नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे, क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है, जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए की बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है
1: जी, ये अलग तरह की रेसिपी है। लेकिन हमने अपने श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में, जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा

0: जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है उबले हुए मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसे ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताजी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले, अदरक, लहसुन ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दू किस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा जो कि पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है।
1: और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है
0: जी।
1: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर ले, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून ले ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन, अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बना के उसमें भर ले। वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है तो तवे पर सेक ले। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही होता है पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारी जो सखियां और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि बनाएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश की व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने की, सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: सेहतनामा।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं, संगीत से भी प्यार करते हैं, तो एक सवाल हमारा ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है?
2: पुरानी यादें ताजा हो रही है
1: जी।
2: उस जमाने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज, यही आप लोगों की आवाज और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं सकते हैं और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
2: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
1: जी।
2: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
1: जी।
2: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
1: जी।
2: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
1: जी।
2: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है
1: जी। तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहां तक मिथ है, कहां तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है?
2: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन

0: इनके कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुए कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
1: जी,
0: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
1: जी जी,
0: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन होना महत्व का है लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
1: जी।
0: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा ये गलत बात है और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल। तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं?
0: राइट, पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है
1: जी।
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं
1: जी।
0: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
1: जी जी।
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है
1: जी,
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है लेकिन तपास करनी जरूरी है
1: जी जी।
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं
1: जी,
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं, उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ये ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं
1: जी,
0: जैसे डायबिटीज, जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है
1: जी जी जी।
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं
1: जी,
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है
1: जी,
0: या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है
1: जी जी। तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी या क्या तरीका है?
0: राइट, सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को
1: जी जी,
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सीवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है
1: जी।
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है, सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है, यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, ये ब्लड टेस्ट है
1: जी।
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्ति

0: रहता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या पीएसए का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है। ये भी गलत मानना है कि एक बार पीएसए का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है। पीएसए बढ़ने के भी अलग अलग कारण है, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर पीएसए का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं या अंदर यूरिन रह जाती है। सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है।
1: ओके।
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं।
1: जी जी।
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक कहता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है।
1: जी, बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती है कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं। बेहतर है कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहाँ पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: जरूर, इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है।
1: क्या बात है।
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ,
0: दो आंखें बारह हाथ।
1: क्या बात है, सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है, सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है, मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है
0: जी, जी।
1: लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर की बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है, तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: राइट, सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना, या तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है, प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाई रिडक्टेस इनहिबिटर, ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
0: जी।
1: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं।
0: जी।
1: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
0: जी जी।
1: तो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए।
0: जी।
1: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था।
0: जी।
1: आजकल दूरबीन से, जिसे हम QPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बड़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रिज्यूम है या फिर यूरो लिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सके और पेशेंट को राहत दे सके ये कोशिश रहती है।
0: जी।
1: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं।
0: जी, जी।
1: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं।
0: जी, जी।
1: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है।
0: जी।
1: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी इसका प्रचार हो रहा है।
0: जी, जी।
1: और पेशेंट वो सोच के आ जाता है कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, और वो करा के आते हैं लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाए वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि हमें दो तीन दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
1: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है कैथेटर और बैग एंड देन पेशेंट्स क्वाइट ऑल राइट. जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है. कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है. लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था, वो अब नहीं रहा है. पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है.
0: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े. तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं. कौन सा गाना सुनवाए?
1: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें.
0: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की आवाज.
1: किशोर कुमार की आवाज, क्या गाना है
0: जी. सुनते हैं यही गाना फिल्म सफर.

0: मन से भरी तेरी आँखें।
1: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहां तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
2: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोन चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है, सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं।
1: जी जी।
2: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है
1: जी।
2: क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपकी शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं, सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती हैं, और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है
1: जी।
2: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है
1: जी। लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो इससे भी नुकसान है। डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
2: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है, और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है
1: जी।
2: स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर, कुछ चीजें जेनेटिक्स है, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है, और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। So, इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
1: जी जी। यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
2: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए
1: जी, जी।
2: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है। लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है, जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
1: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा।
2: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है
1: जी।
2: सो हर पुरुष को, मैंने बताया, ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है, लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है
1: जी। और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं?
2: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहां इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जिसे हम कहते हैं
1: जी हाँ।
2: कभी कभी वहां पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है
1: जी जी।
2: सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ही बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं, या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है
1: जी। तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
2: जरूर, क्योंकि

0: कि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है
1: जी।
0: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है और जब यूरिनरी समस्या बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है। आप बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या शुरू हो जाती है। सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है। सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है,
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए right. हैं। तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए। कौन सा गाना?
0: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो,
1: ब्लैक पेंसिल का गाना।
0: जी हाँ जी, रोमांचिक गाना है
1: जी,
0: लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है।
1: जी जी, डॉक्टर साहब आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे
0: तो जी
1: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक जमाना था गाते थे
1: जी।
0: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूथिंग थिंग कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है
1: जी जी।
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है
1: जी।
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं
1: जी।
0: सो म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस
1: जी जी।
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है
1: जी। तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में सोचेंगे नहीं,
1: बंद हो जाएगा जी बिल्कुल। तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।

कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तू मुझे बाद

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है रात में खास तौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तो ये क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ सावधानी रखें कि इस स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट, सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना जरूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं
0: जी।
1: दूसरी बात लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे, रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है। सो काफी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफी दिक्कतें आने लगती है। सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है वैसा नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफी बाकी भी ऐसे कॉजेस है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं, सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
0: जी, जी।
1: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ये नहीं होता है। और ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है
0: जी, जी।
1: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं, इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
0: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
1: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं
0: जी।
1: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है, और जब ज्यादा यूरिन जमा होने लगता है धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है
0: जी।
1: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल
0: जी।
1: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए
0: जी।
1: सो और फोर्थ इन्फेक्शन विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफी अलग अलग कारण हैं लेकिन ये कॉमन कारण है
0: जी।
1: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस कि काफी लोग मानते हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए, सच बात है पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है
0: जी।
1: तीसरी बात जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है
0: जी।
1: और आजकल काफी दवाइयां आई है जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा, एक्सरसाइजेस, ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स, ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सके। सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में, और दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए, क्या वजह हो सकती है, महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
1: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है
0: जी,
1: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है
0: जी।
1: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तरह यंग लेडी

0: जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है. सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफ स्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है. फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है. और थर्ड, फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं. वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है. इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है, क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है.
1: जी जी.
0: कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है. तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं. बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है. अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट और काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहां किसी को हम इसके बारे में बताएं.
1: जी,
0: ये गलत बात है. आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है.
1: बिल्कुल. अपने श्रोताओं को बता दें विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट है और बड़े ही जानकार डॉक्टर है. डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम.
0: जरूर.
1: कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना, जो दंगल मूवी में है.
1: जी.
0: बहुत अच्छा गाना है.
1: जी.
0: और वहाँ इमोशंस भी बहुत अच्छे फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है. वो गाना अच्छा रहेगा.
1: जी, सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में.

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं, क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं।
0: ओके।
1: और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है। सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में, और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयां ऐसे यूज करनी पड़ती कि जिसकी आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी, और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है? तो ये भी श्रोताओं को
1: बताइए। वो अवॉइड करना जरूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी जरूरी है
0: जी।
1: क्योंकि कभी कभी कहां से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है
0: जी।
1: सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं
0: जी। इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी है कई बार आजकल, जब न्यू कपल खासतौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
1: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये सही नहीं है
0: जी।
1: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है
0: जी।
1: हर पेशेंट, वेदर इज मैन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है
0: जी।
1: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है
0: जी।
1: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है
0: जी। बिल्कुल,
1: अल्टीमेटली सेक्शुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इम्पोर्टेंट। सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से, इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो।
0: बिल्कुल,
1: ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनीबडी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज इम्पोर्टेंट। सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं
0: जी। बिल्कुल, हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बहुत सारी आती हैं, तो आपके इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं।
1: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: कुछ चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन इससे
0: और
1: शर्म के मारे में कि ये बात हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: जरूर, लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं, कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है।
0: ओके।
1: ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं
0: जी।
1: दूसरा इसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं
0: okay.
1: कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए। इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक ना हो जाए
0: जी।
1: सो ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफकोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है
0: जी। दोस्तों सेहत नामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश बोझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

शिववाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को आपकी दोस्त मनीषा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो सबके दिल के बहुत करीब होता है। जी हाँ, वो है संगीत। हम कह सकते हैं कि संगीत एक साधना है। संगीत केवल मनोरंजन या कला नहीं है, बल्कि यूं कहें कि आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और एकाग्रता प्राप्त करने का एक योग भी है। और इसके लिए गायन, वादन और नृत्य तीनों का निरंतर और नियमबद्ध अभ्यास जो है वो भी आवश्यक होता है। क्योंकि हम संगीत थेरेपी के बारे में भी, म्यूजिक थेरेपी जो है, इसके बारे में भी कई लोग जानते होंगे कि किस तरीके से जो है संगीत के द्वारा भी लोगों को ठीक किया जाता है। संगीत एक ऐसी कला है जिससे हमारे हम कह सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य को तो ठीक करता है, इसके अलावा मानसिक जो स्वास्थ्य है हमारा, उसमें उसे ठीक करने में, उसे बेहतर करने में सबसे अच्छी भूमिका संगीत निभा सकता है। जी हाँ, कई बार जो है कई लोग तनाव में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं या किसी वजह से परेशान होते हैं, तो अगर धीमा और मधुर संगीत जो है वो सुने और एकांत में रह कर के अपने जो पसंद के गीत है, पसंद का म्यूजिक है, उसे सुने, तो उससे भी जो तनाव है वो कम हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि संगीत को एक साधना के रूप में भी लोग देखते हैं, क्योंकि भारतीय शास्त्रीय परंपरा में संगीत साधना को नाद योग माना गया है, जिसके गहरे और आध्यात्मिक पहलू भी है, जैसे कि एकाग्रता और ध्यान। जी हाँ, नियमित रियाज से मन शांत होता है और तनाव भी दूर होता है। एक साथ ही सब सधे, यानी कि सात स्वरों में से केवल षडज, यानी कि सा की सही साधना करने से अन्य सभी स्वरों पर स्वतः ही नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। और धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। जी हाँ, कला को निखारने के लिए धैर्य के साथ लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होती है, जो जीवन में भी अनुशासन लाता है। अगर बात कर रहे हैं संगीत साधना की, तो सरल संगीत जो होता है, यानी कि धीमा मधुर, जो यूं कहें कि जो शब्द सुनते ही मन में एक मधुर लहर सी दौड़ जाए, वही तो है संगीत। हम में से ज़्यादातर लोग जो है वो संगीत सुनना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों संगीत एक ऐसी कला है जिससे न केवल हमारा मनोरंजन होता है, बल्कि हम यूं कहें, जैसे हमने बताया कि मानसिक सुकून जो है वो भी मिलता है। तो यानी संगीत को सिर्फ अगर हम मनोरंजन की दृष्टि से देखें तो वो कुछ नहीं, लेकिन अगर उसे हम एक साधना के रूप में देखें, हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के रूप में देखें, थेरेपी के रूप में देखें, तो संगीत बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और संगीत की जड़ें दोस्तों आध्यात्मिकता और इतिहास से जुड़ी है। जी हाँ, वास्तविकता ये है कि अति प्राचीन काल में संगीत की उत्पत्ति सामवेद और शिव तांडव से मानी जाती है, और इसी कारण संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि ईश्वर प्राप्ति का श्रेष्ठ और सुलभ मार्ग भी है। इसलिए तो इसे मार्गीय संगीत भी कहा जाता है। यदि दोस्तों इसे सच्ची साधना और शुद्ध अंतःकरण से गाया जाए, तो ये न केवल हमारे भौतिक शरीर को अपितु हमारे सूक्ष्म शरीर को भी उत्थान की ओर ले जाता है। प्राचीन काल की बात करें तो उसमें गाई जाने वाली प्रबंध और कालांतर में विकसित हुई ध्रुपद गायकी इस बात की जीवंत गवाह भी है। अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें, तो आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोग संगीत के बारे में क्या सोचते हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि गाना बहुत आसान होता है। शायद यही वजह है कि संगीत जो है वो कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान जो है उससे पीछे छूट रहा है। तो रुचि जो होती है उसमें भी बहुत अंतर होता है। जहाँ कई लोगों को तो सुगम संगीत सुनने का शौक होता है, सुगम संगीत जो है, लाइट म्यूजिक जो है वो सुनना पसंद करते हैं लोग, वहीं पर कुछ लोग जो है क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत को तवज्जो देते हैं। शास्त्रीय

शिक्षा आज स्कूल कॉलेज की चार दीवारी तक सीमित रह गई है तो इसे और ज़्यादा बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, संगीत एक गहरा समंदर है जिसमें हम जितना डूबते हैं उतना ही सुकून मिलता है। जो लोग संगीत को आसान समझते हैं वे शायद ये नहीं जानते कि इसे सीखने के लिए वर्षों के कड़े अभ्यास की आवश्यकता होती है। गाते समय सुर और ताल का सामंजस्य बैठाना अनिवार्य है और अगर इसमें जरा सी चूक हुई तो गाने का पूरा ही आनंद किरकिरा हो जाता है। संगीत केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि एक भाव भी है और बिना भाव के किसी भी गाने की कल्पना करना असंभव है। दोस्तों, बहुत सी जो ठुमरी है, दादरा है, कजरी, चैती, गजल, ये शैलियाँ जो है संगीत के भाव सौंदर्य को निखार कर प्रकट करती हैं और श्रोता के हृदय को छू लेती हैं। और दोस्तों, संगीत को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। संगीत में कई, हम यूँ देखें कि भविष्य में कैरियर जो है हमारा वो बनाने के लिए भी संगीत एक बेहतरीन विकल्प है। अन्य कला क्षेत्रों में जितने भी उन्हें विशेष स्थान है, सम्मान प्राप्त है, उसी प्रकार संगीत को भी उतना ही सम्मान और उतना ही उसका भी एक विशेष स्थान है। इसीलिए हमें समझना होगा कि संगीत भारत की अनमोल धरोहर है जो विश्व स्तर पर हमारी संस्कृति का परिचय देता है। कला चाहे कोई भी हो उसे बराबर सम्मान मिलना चाहिए। संगीत दोस्तों वो सेतु है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है और प्राचीन विरासत को केवल मनोरंजन न समझकर इसे एक साधना के रूप में हम सबको सम्मान देना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि जैसे संगीत की बात कर रहे हैं तो संगीत जो है एक साधना के रूप में हमने बताया कि किस तरीके से संगीत एक साधना के रूप में काम करता है, तो इसीलिए इसे सिर्फ मनोरंजन का साधन न मान करके इसमें अपनी रुचि दिखाइए और इसे एक थेरेपी के रूप में हम यूज कर सकते हैं ताकि संगीत सुनने से हमारी जितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, हमें हमारे अंदर तनाव है, डिप्रेशन है, कोई टेंशन है, तो उसे हम दूर कर सकें। और सबसे ज़रूरी कि एक धीमा और मधुर संगीत जो होता है वो सबके कानों के लिए भी प्रिय होता है। इसीलिए संगीत जो है सुनते रहिए और दूसरों को भी सुनाते रहिए।

धर्म की शक्ति और मर्यादा स्वयं धर्म है राम नाम पाकर तेरे है सा

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे केके की आवाज में दशावतार फिल्म का ये गीत। अब हम बात कर रहे हैं कैच द रेन अभियान के बारे में। जी हाँ, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा एक ये प्रमुख जन आंदोलन है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा के पानी का संरक्षण और भूजल का पुनर्भरण करना है। दोस्तों, ये अभियान बारिश को वहीं पकड़े जहां वह गिरती है और जब वह गिरती है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स के मूल मंत्र पर काम करता है। और इसका उद्देश्य यही है कि मानसून के दौरान होने वाली बारिश की हर एक बूंद को बर्बाद होने से बचाना और उसे संचित करना है। और इसके तहत दोस्तों, बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना, तालाबों से गाद निकालना, चेक डैम बनाना और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना शामिल है। और ये अभियान आम जनता, किसानों, स्कूलों और स्थानीय संस्थाओं को जोड़कर एक जन आंदोलन के रूप में भी चलाया जा रहा है। दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जल मिशन के तहत शुरू किया गया है इसे। और भूजल स्तर में अगर इसके लाभ की बात करें तो भूजल स्तर में सुधार भी होता है, जिससे खेती के लिए पानी और पीने के पानी की समस्या दूर होती है। दोस्तों, ये अभियान अक्सर प्री मानसून से लेकर मानसून के पूरे सीजन तक सक्रिय रूप से चलता रहता है। तो कैच द रेन का मतलब ही यही है कि बारिश को पकड़ो। और इसे इस तरीके से कहा गया है कि जहां वो गिरती है, जब वो गिरती है, यानी कि जब भी बारिश हो रही है, आप उसके पानी का संचय करो, जल संरक्षण करो। और इसके लिए रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जैसे हमने बात की कि किस तरीके से जो है आप अपने घरों की छत पर जो है छत को पूरी तरह से, जब भी आपको लगे बारिश आने वाली है, उसे साफ सुथरी कर दें और नालियों को पूरी तरह से साफ रखें। और छत के ऊपर जो नाली होती है, वहाँ से एक पाइप निकाल करके अपने घर के आंगन में कहीं पर भी जो है उस पानी को आप इकट्ठा कर सकते हैं। और वो पानी जो है आप किसी भी चीज़ में उपयोग कर सकते हैं उस पानी का।

चाहे वो आप उसे घर के किसी भी काम में यूज़ करें, और उसके अलावा यूँ कहें कि वो पानी जब ज़मीन के अंदर जाता है तो उससे जो है हमारी जो ज़मीन है उसमें भी पानी की मात्रा रहती है। तो किसानों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरीके से जो है कई बार बारिश ना होने के कारण खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो जब भी बारिश आती है तो आप उस बारिश के पानी का संचयन कर सकते हैं। तो जैसे जो पुराने तालाब जो हैं जो अब क्षतिग्रस्त हो गए हैं या जिसका जिनका अब उपयोग नहीं हो रहा है, तो उन्हें जो है फिर से साफ सुथरा करके और उन्हें फिर से बारिश के समय भरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जितने भी जल स्रोत हैं, चाहे वो छोटे तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़े हैं, सबको पुनर्जीवित करने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जल जो है हमारी जल स्तर जो है बहुत कम होता जा रहा है, जल की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और पीने का पानी बहुत कम है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी कई जगह जो है जल का मिसयूज किया जा रहा है, तो उसका हम कह सकते हैं कि जल का संचयन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारा जो भविष्य है, उन्हें एक तोहफे के रूप में जल की जो बूंदे हैं वो दे सकें। हर बूंद बचाने का हम सबको संकल्प लेना है और कैच द रेन अभियान से हम सबको जुड़ना है, जल संरक्षण के जन आंदोलन का हिस्सा भी बनना है। दोस्तों, आज लिया गया आपका एक छोटा सा संकल्प आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षित और सतत भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। जी हाँ, इसीलिए वर्षा जल संचयन में भागीदारी का संकल्प लें और कैच द रेन अभियान में जुड़ें, ताकि आप भी अधिक से अधिक जो है जल की बूंदों का संरक्षण कर सके। तो जिस तरीके से हमने बताया कि आप अपने घरों पर ही जो है घर पर ही अपने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं, घर के आंगन में एक गड्ढा खोद करके उसे साफ सुथरा करके आप उसमें पानी इकट्ठा कर सकते हैं, और बारिश के समय जो है अगर आपकी जो बड़ी बड़ी टंकियां हैं उन्हें आप खोल सकते हैं ताकि बारिश का पानी उनमें इकट्ठा हो जाए। और छोटी छोटी चीज़ें जो है जैसे अपने घर की ही हम बात करें तो किस तरीके से हम जल संरक्षण कर सकते हैं उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। चाहे आपका नल जो है अगर टपक रहा है तो आप उसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो उन बूंद को आप व्यर्थ न बहने दें। और हम सब जानते हैं कि आज पानी की समस्या से, जल की समस्या से हर कोई जूझ रहा है, तो ऐसा भविष्य में ना हो और सबको पूरी मात्रा में जो है जल मिल सके, इसीलिए आज ही संकल्प करें और वर्षा जल संचयन में अपनी हिस्सेदारी लें।

तो दोस्तों, ये है हमारा विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर। 7 जुलाई को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। जी हाँ, हर साल 7 जुलाई को ग्लोबल फॉरगिवनेस डे मनाया जाता है और इसका मकसद नफरत छोड़कर माफ़ी और शांति को बढ़ावा देना है। भारत में भी स्कूल कॉलेज में पीस एंड हारमोनी प्रोग्राम्स भी होते हैं। भारत सरकार ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च किया।

और इसका मुख्य उद्देश्य स्किल और शिक्षा को जोड़ना है। 7 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्रालय ने एनसीपी 2.0 लॉन्च किया और अब स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और स्किल कोर्स के क्रेडिट आपस में ट्रांसफर हो सकेंगे। एक राष्ट्र एक शिक्षा प्रणाली की दिशा में ये उठाया गया एक कदम है। 7 जुलाई को भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन समझौता किया। जी हाँ, नेटिव वाई और दक्षिण कोरिया की सैमसंग ने चिप डिजाइन और आरएनडी पर एमओयू किया। बेंगलुरु और नोएडा में नए डिजाइन सेंटर खुलेंगे और मेक इन इंडिया को इससे बूस्ट भी मिलेगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इस वर्ष जो है 7 जुलाई को मनाया गया और इसकी थीम रही फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। WHO प्लस FAO ने इसकी थीम रखी। भारत में फसाई ने 7 जुलाई को ईट राइट इंडिया 2.0 अभियान शुरू किया। मिलावट रोकने के लिए AI बेस्ड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन भी किया गया। दोस्तों, 7 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र राज्य ने डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की। महाराष्ट्र सरकार ने हर नागरिक को ADHA लिंक्ड डिजिटल हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की। हॉस्पिटल में पूरा मेडिकल रिकॉर्ड QR से मिलेगा। दोस्तों, 7 जुलाई 2026 को भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान को बनाया गया। जनरल अनिल चौहान का CDS के रूप में कार्यकाल 2026 को बढ़ाया गया। इसका फोकस रहा थिएटर कमांड और जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन के साथ। भारत और फ्रांस देश का वरुण 2026 नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है। अरब सागर में भारत फ्रांस का वरुण 2026 अभ्यास शुरू हुआ है। INS विक्रांत और फ्रेंच कैरियर चार्ल्स बी गॉल इसमें शामिल है। हिंद महासागर में सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। और दोस्तों, NHAI ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 262 किलोमीटर का बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे 7 जुलाई को खुला और सफर 4 घंटे से घटकर 2 घंटे हो गया। 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर इससे और जुड़ेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पी सी महालनोबिस जयंती पर 7 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी के जनक PC महालनोबिस की जयंती 30 जून को थी, लेकिन अवार्ड और कार्यक्रम 7 जुलाई को होते हैं। और इस वर्ष 2026 की इसकी थीम रही डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 7 जुलाई 2026 को अविनाश साबले भारतीय खिलाड़ी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड जीता। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड जीता और ये उनकी लगातार दूसरी एशियन चैंपियनशिप जीत है। विश्व एलर्जी दिवस अंतर्राष्ट्रीय 8 जुलाई को मनाया गया और हर साल 8 जुलाई को वर्ल्ड एलर्जी डे मनाया जाता है। WFAS और WHO मिलकर इसे मनाते हैं और हर वर्ष इसकी एक थीम रखी जाती है और इस वर्ष की थीम रही एलर्जी केयर फॉर ऑल। और इसका उद्देश्य बनाने का रहा कि अस्थमा, फूड एलर्जी के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 8 जुलाई को केंद्र सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक्स नीति 2.0 लॉन्च की और इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को GDP का 8% करना है। जी हाँ, वाणिज्य मंत्रालय ने नीति 2.0 लॉन्च की। अभी भारत की लॉजिस्टिक लागत GDP का 13-14% है। टारगेट 2030 तक इसे 8% करना है और 30% समय इसका घटाना है। 8 जुलाई को भारत ने अर्जेंटीना के साथ क्रिटिकल मिनरल समझौता भी साइन किया। जी हाँ, भारत अर्जेंटीना ने लिथियम और कॉपर की सप्लाई पर मूव किया और EV बैटरी और सेमीकंडक्टर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। खनिज सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा भी ये रहे। 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार पोर्टल लॉन्च किया। UP सरकार ने लखनऊ में पोर्टल लॉन्च किया और 1 करोड़ युवाओं को नौकरी, इंटर्नशिप के मौके दिए और AI बेस्ड जॉब मैचिंग भी इसमें की जाएगी। 8 जुलाई को RBI ने UPI लेनदेन की लिमिट लगभग 5 लाख रुपए की। जी हाँ, RBI ने टैक्स, शिक्षा, हेल्थ पेमेंट के लिए UPI की सिंगल ट्रांजेक्शन लिमिट 1

लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। 16 सितंबर 2026 से ये लागू भी कर दिया जाएगा। 8 जुलाई को भारत का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट गुजरात में शुरू हुआ। कच्छ गुजरात में देश का पहला ग्रीन अमोनिया प्लांट शुरू किया गया। रिन्यूएबल एनर्जी से ये बनाया जाएगा। उर्वरक और शिपिंग फ्यूल में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 8 जुलाई को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया और इस वर्ष इसकी थीम रही अवर ओशियन अवर फ्यूचर। आईएमओ ने इसकी थीम रखी और भारत ने सागरमाला 2.0 के तहत 5 नए ग्रीन पोर्ट की घोषणा की थी। 8 जुलाई को दोस्तों दीप नारायण नायक भारतीय को ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2026 दिया गया। झारखंड के सरकारी स्कूल टीचर दीप नारायण नायक को ये दीप नारायण को जो है ग्लोबल टीचर पुरस्कार दिया गया। उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए साइंस ऑन व्हील्स लैब भी बनाई है। भारत और मालदीव देश का एक्वेरियन 2026 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। कर्नाटक में भारत मालदीव का एक्वेरियन 2026 अभ्यास शुरू हुआ और आतंकवाद विरोधी और आपदा राहत पर ये फोकस करेंगे। दोस्तों फोर्ब्स ने भारत के शिव नादर अरबपति को एशिया का सबसे बड़ा परोपकारी घोषित किया। HCL के संस्थापक शिव नादर ने शिक्षा और हेल्थ में 2 2000 करोड़ रुपए तक का दान किया है और फोर्ब्स की लिस्ट में ये टॉप पर है। दक्षिण सूडान स्वतंत्रता दिवस 9 जुलाई को मनाया गया और 9 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान दुनिया का 193वां देश बना था। हर साल 9 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ये लोग और भारत ने 2011 में सबसे पहले इसे मान्यता दी थी। 9 जुलाई को भारत सरकार ने पीएम ई विद्या 3.0 लॉन्च किया है और इसका मुख्य फोकस है AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग। शिक्षा मंत्रालय ने पीएम ई विद्या 3.0 लॉन्च किया है और अब दीक्षा ऐप पर AI टीचर हर बच्चे के लेवल के हिसाब से पढ़ाएगा। 12 भाषाओं में कंटेंट है और लक्ष्य इसका रहेगा कि डिजिटल डिवाइड कम किया जाए। दोस्तों 9 जुलाई को भारत ने UAE देश के साथ डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर समझौता भी किया। RBI और UAE सेंट्रल बैंक ने UPI और अनी को जोड़ने का समझौता किया। भारत UAE के बीच UPI से तुरंत पैसा भेजा जा सकेगा और रेमिटेंस भी इससे सस्ता होगा। 9 जुलाई को विश्व किडनी दिवस जो है वो मनाया गया और इस वर्ष इसकी थीम रही डिटेक्ट अर्ली प्रोटेक्ट काइंडली। ISN ने थीम रखी थी और भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1000 नए डायलिसिस सेंटर खोलने की घोषणा भी की। डायबिटीज ब्लड प्रेशर से किडनी बचाने के लिए इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। दोस्तों हरियाणा राज्य ने मुख्यमंत्री सोलर रूफटॉप योजना शुरू की और हरियाणा सरकार ने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने पर 60% सब्सिडी दी और इसका टारगेट रहेगा कम से कम 5 लाख घरों में ये किया जाए और बिजली बिल जो है 80% तक कम किया जाए। भारत और श्रीलंका देश का मित्र शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है। पुणे में भारत श्रीलंका का मित्र शक्ति 2026 शुरू हुआ है और जंगल वॉरफेयर और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की ट्रेनिंग इसमें दी जा रही है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 9 जुलाई को गुजरात के एक डेयरी किसान को मिला। पशुपालन मंत्रालय ने गुजरात के किसान भावेश पटेल को बेस्ट डेयरी फार्मर का अवार्ड दिया। देसी गाय से 5000 लीटर दिन जो है दूध जो है वो एक दिन में निकाला जाता है। दोस्तों इसके बाद हम बात कर रहे हैं विश्व ऊर्जा दिवस के बारे में। जी हाँ, 10 जुलाई को विश्व ऊर्जा दिवस जो है मनाया गया। हर साल 10 जुलाई को वर्ल्ड एनर्जी डे मनाया जाता है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इसकी एक थीम रखी गई। 2026 की थीम रही क्लीन एनर्जी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। भारत ने इसी दिन राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप 2030 अपडेट भी किया। दोस्तों 10 जुलाई को भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत 100 क्वांटम स्टार्टअप को फंड दिया।
विज्ञान मंत्रालय ने

डीपटेक स्टार्टअप को 1000 करोड़ रुपए का फंड दिया। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, सेंसिंग, इन सब पर इसका फोकस किया जाएगा। भारत 2030 तक 50 क्यूबिट कंप्यूटर बनाना चाहता है। 10 जुलाई को भारत ने डेनमार्क देश के साथ ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर समझौता भी किया। यहां बंदरगाह मंत्रालय ने डेनमार्क के साथ एमओयू किया। मुंबई कोपेनहेग रूट पर इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाले जहां चलेंगे। 2030 तक कार्बन एमिशन 50% कम करना इसका टारगेट रखा गया है। 10 जुलाई को राजस्थान राज्य ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा रसोई 2.0 शुरू की। राजस्थान सरकार ने 8 रुपए में नाश्ता प्लस 10 रुपए में भरपेट भोजन योजना का विस्तार किया। अब 2000 और केंद्र खुलेंगे और 1 करोड़ लोगों को लगभग इसका लाभ दिया जाएगा। 10 जुलाई को भारत का विदेश व्यापार नीति 2026-31 लॉन्च हुआ और इसका लक्ष्य है कि निर्यात लगभग $2 ट्रिलियन। वाणिज्य मंत्री ने नई एफटीपी लॉन्च की। 2031 तक माल प्लस सेवा निर्यात $2 ट्रिलियन। एमएसएमई, ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट और ग्रीन प्रोडक्ट पर इसका फोकस रहेगा। भारत और रूस देश का इंद्र 2026 नौसेना अभ्यास शुरू हो चुका है। जी हाँ, चेन्नई तट पर भारत रूस का इंद्र 2026 अभ्यास शुरू हुआ। पनडुब्बी रोधी युद्ध, हवाई रक्षा और सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें शामिल रहेगा। 10 जुलाई को राजेंद्र सिंह को यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर अवार्ड मिला। जी हाँ, भारत के वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड दिया गया। राजस्थान में 1200 जोहड़ बनवाए हैं इन्होंने। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है और जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन और सतत विकास पर जागरूकता के बारे में बताना इसका उद्देश्य है। भारत और नेपाल देश का सूर्यकिरण 2026 सैन्य अभ्यास भी शुरू हो चुका है। यहाँ उत्तराखंड में भारत नेपाल का सूर्यकिरण 2026 अभ्यास शुरू किया गया। पहाड़ी युद्ध, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और आपदा राहत पर इनमें ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। 11 जुलाई 2026 को विश्व चेस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी दिल्ली करेगा। FIDE ने घोषणा की कि दिसंबर 2026 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप दिल्ली में होगी और भारत में 11 साल बाद जो है ये किया जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद हम बात करें दोस्तों विश्व पेपर बैग दिवस। जी हाँ, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय विश्व पेपर बैग दिवस जो है वो मनाया जाता है और हर साल 12 जुलाई को वर्ल्ड पेपर बैग डे मनाया गया और प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता और पेपर बैग इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। भारत में प्लास्टिक मुक्त भारत 2.0 अभियान के तहत इस दिन 1 करोड़ पेपर बैग बांटे भी गए। बारह जुलाई को झारखंड राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन शुरू किया। झारखंड सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए मिशन लॉन्च किया है। 2 साल में 50 लाख महिलाओं को UPI, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन बैंकिंग सिखाना इसका उद्देश्य है। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट जो है वो गुजरात में शुरू किया गया। अहमदाबाद के पास NTPC ने पहला कार्बन कैप्चर प्लांट शुरू किया। फैक्ट्री से निकलने वाले CO2 को पकड़ कर उसे फ्यूल में बदला जाएगा। 2030 तक 10 ऐसे प्लांट्स का लक्ष्य रखा गया है। भारत और किर्गिस्तान देश का खंजर 2026 सैन्य अभ्यास जो है वो 12 जुलाई को शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारत किर्गिस्तान का खंजर 2026 अभ्यास शुरू हुआ। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और आतंकवाद विरोधी ट्रेनिंग जो है वो

जी जा रही है। फूड सेफ्टी, न्यूट्रिशन और सस्टेनेबिलिटी में केरल नंबर वन है। जी हाँ, 12 जुलाई को एनआईटीआई आयोग ने इंडिया स्टेट फूड इंडेक्स 2026 जारी किया और इसमें केरल टॉप पर रहा। G2O टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 12 जुलाई को वाराणसी में हुई। इसकी थीम रही ग्रीन टूरिज्म और डिजिटल इनोवेशन। जी हाँ, 20 देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। हर साल 13 जुलाई को यानी आज ही के दिन इंटरनेशनल रॉक डे भी मनाया जाता है और इसका उद्देश्य रहता है पृथ्वी की भूवैज्ञानिक विरासत और चट्टानों के महत्व को समझना। भारत में GSI ने इस दिन भू विरासत स्थल की नई लिस्ट भी जारी की। भारत ने जर्मनी देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई। जी हाँ, 13 जुलाई यानी आज ही के दिन नवीन ऊर्जा मंत्रालय और जर्मनी ने टास्क फोर्स बनाई है और ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कॉमन स्टैंडर्ड पर इसमें काम किया जाएगा। यूपी सरकार ने शहरी गरीबों को 1,00,000 में पक्का घर देने की योजना शुरू की। 2026-27 में 10,00,000 घर का टारगेट भी रखा गया है। भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में खुलेगा। जी हाँ, कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है 2027 से क्लास शुरू की जाएगी और इसमें कोर्स रहेंगे AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस। IIT प्लस इंडस्ट्री पार्टनरशिप भी इसका हिस्सा रहेंगे। ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास NHAI ने पटना रांची में किया। 300 किलोमीटर की ग्रीन हाईवे, दोनों तरफ 10,00,000 पेड़, सोलर लाइट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कार्बन न्यूट्रल रोड, ये सब बनाने का प्रोजेक्ट जो है वो आज शुरू किया गया है पटना रांची में। ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम करंट अफेयर्स।

दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। जी हाँ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नए विस्तार या मुद्रा 2.0 के तहत सरकार गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि लघु उद्यमियों के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख तक कर चुकी है। ये योजना तरुण श्रेणी के उद्यमियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है, जिन्होंने पहले मुद्रा ऋण सफलतापूर्वक चुकाया है। मुद्रा योजना के तहत छोटे व्यवसायों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है 4 श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है, शिशु, किशोर, तरुण और तरुण। मुद्रा 2.0 शिशु में 50,000 रुपये तक के ऋण क्या है और किशोर 50,000 से 5 लाख तक के ऋण जो है उसमें दिए जाते हैं, तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक के ऋण और तरुण मुद्रा 2.0 में 10 लाख से 20 लाख तक का नया ऋण उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने पिछले ऋण का पूरा भुगतान कर दिया है उन्हें दिया जाता है। और दोस्तों, इसके कई लाभ भी है। गारंटी मुक्त लोन, यानी कि ऋण के लिए किसी प्रकार की गारंटी या संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। ब्याज दर की बात करें तो ब्याज दरें बैंक और आवेदक की प्रोफाइल के आधार पर निर्धारित होती है, औसतन लगभग 11% से शुरू होती है। और इसके लिए पात्रता जो है विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में लगे हुए सूक्ष्म उद्यम या व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने इसके लिए आवेदन करने के लिए आप अपने नज़दीकी सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंक, ग्रामीण बैंक या लघु वित्त बैंक में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में हमने बताया कि किस तरीके से जो है आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। व्यवसायी और उद्यमी यानी कि दुकानदार।

व्यापारी, विक्रेता, कारीगर, मरम्मत की दुकानें चलाने वाले और छोटे निर्माता। सेवा प्रदाता जो है यानी कि ट्रक ऑपरेटर, खाद्य सेवा, कैटरिंग संचालन जो होते हैं, मशीन ऑपरेटर और सैलून या पार्लर वाले। और कृषि संबंधी जो गतिविधियां होती हैं, कृषि से जुड़े काम जैसे मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन और मछली पालन करने वाले लोग। और इकाई के प्रकार देखें तो व्यक्ति, एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, ये सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन के लिए कुछ शर्तें होती है। आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसका कोई पुराना लोन जो है डिफॉल्ट या आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो आप ही इसका जो है फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का।

अभी आप सुन रहे थे ईश्वर फिल्म का ये गीत नितिन और लता की आवाजों में। दोस्तों, मुस्कुराना एक ऐसी कला है जो न केवल आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों को भी मजबूत करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुस्कुराने के बारे में कि मुस्कुराना भी तो एक कला है। ये एक सकारात्मक ऊर्जा है दोस्तों, जो सामने वाले के मन में आपके लिए जगह बनाती है और जीवन की मुश्किलों से लड़ने की ताकत भी देती है। मुस्कुराने की इस कला को आपको सीखना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि इससे आपके तनाव से राहत मिलती है। मुस्कुराने से शरीर में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन निकलते हैं, जो खुशी का एहसास कराते हैं और तनाव कम करते हैं, और पॉजिटिव जो वाइब्स है वो आती है, यह सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक प्यारी सी मुस्कान कठिन परिस्थितियों को भी आसान बना सकती है। ये दूसरों के साथ संवाद और संबंधों को बेहतर करती है और तो और आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। यानी कि आप में जो है एक जैसे पॉजिटिव ऊर्जा तो आती है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो बूस्ट होता है। मुस्कुराने से आपका आत्मविश्वास छलकता है, आप लोगों के बीच अधिक मिलनसार भी लगते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां हमारा मन नहीं करता कि हम मुस्कुराएं, तो इसके लिए आपको गहरी सांस लेनी होगी। मुस्कुराने से पहले गहरी सांस लें और चेहरे की मांसपेशियों को रिलैक्स करने दें। और कई बार जो है कई लोग चाहते हैं मुस्कुराना पर मुस्कुरा नहीं पाते, तो इसके लिए आप आईने का अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि शीशे के सामने खड़े होकर अभ्यास करें। होठों को हल्का सा ऊपर उठाएं और मुस्कुराएं। और इसके अलावा कई शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्माइल करते वक्त जो है यूज करते हैं। जैसे किसी की हम पिक्चर लेते हैं तो हम कहते हैं कि चीज से चीज, यानी कि आप चीज कहिए, तो उसमें आपकी स्माइल जो है वो आ जाती है। और कई ऐसे शब्द हैं जिनकी मतलब कह सकते हैं कि इससे होठों की बनावट जो है वो बहुत ज़्यादा प्राकृतिक

और आकर्षक भी लगती हैं। तो स्माइल करते समय कुछ शब्द हैं, आप उनका उपयोग करके भी हंस सकते हैं, चाहे वो चीज़ है चाहे वो मनी है। और इसके अलावा भीतरी खुशी को भी पहचाने, सच्ची मुस्कान जो है वो भीतर से आती है। वर्तमान में जीना सीखें और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं या उनके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो आपको भी आत्मिक शांति और खुशी मिलती है। इसलिए आप दूसरों को भी जो है खुशी दें और मुस्कुराने की कला अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें, ताकि आप जब भी मुस्कुराएं सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाए।

वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। शाम के 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या को। रात्रि के 9 बजे समय रहेगा न्यूज एट 9 का, और इन दोनों समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि के 11 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचारों को, और 11:05 पर समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। इन्हें भी हम हमारे दिल्ली केंद्र से ही रिले करेंगे। शाम के 6:30 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को। 6:40 पर समय रहेगा जिले की चिट्ठी का, और 6:45 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों को। इन समाचारों को हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। शाम के 6:15 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे भजनों का कार्यक्रम वंदना। शाम के 7 बजे समय रहेगा ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रम ग्राम जगत का। 7:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत को। शाम के 8 बजे समय रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत कार्यक्रम को एक बार फिर से आप सुन सकेंगे 9:15 पर, और रात्रि के 10:30 पर।

शाम के 8:30 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत को। रात्रि के 10 बजे समय रहेगा कार्यक्रम रूपक का। और अब से कुछ ही देर में यानी कि 6:05 पर आप सुन सकेंगे रामचरितमानस गान। ये थी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6:05 होने वाले हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे रामचरितमानस गान।

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगी। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों

बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:15 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वंदना, और आपको सुनवाएंगे आज हम भजन जिन्हें गाया है अनूप जलोटा ने।

दुख है जो रहे गर्त बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे गर्त बातों में, मुख वो है जो

नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती है सब क्या करके आए, देखो सब शिकायत करने आई। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कहते थे मां मत सुनना सब झूठी, ये तो सब बहाना बना के आई मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या, अचानक पूछा था। तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया।

क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया। मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया, हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया, तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती,

0: इनके कहे पतिया जो।
1: थोड़ा गुस्सा दिखाया, कहने लगे माँ ये लाठी और कंबल दे दिया है तुमने, रोज भेज देती हो गाय चराने, ये सब वापस लो, मैं चला, कल से ये काम नहीं करूंगा।
0: मैया ये ले अपनी लंगूटी कमलिया।

विशेष बात हो गई, कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया मां ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई मां नहीं सुन सकी, आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे मां मैं समझ गया बात क्या, ये माखन की बात नहीं, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया।

दोनों कंठ से लगे अश्रुधार बहा रहे हैं, दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। चमत्कार देखिए शब्दों का, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार किया। अभी तक मां कह रही है

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भजन जिसे अनूप जलोटा ने गाया था, और इसी के साथ हमारा वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचारों को, उसके बाद जिले की चिट्ठी, और तत्पश्चात आप सुन सकेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों को, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: वर्ष 2030 तक राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पंचायतवार प्रभावी निगरानी पर जोर दिया। आरजीएचएस में नई व्यवस्था आज से लागू, मरीज 2000 रुपए तक की जांच सीधे करवा सकेंगे। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने सहित अन्य विषयों पर जयपुर में बैठक हुई। और राज्य में मॉनसून का पहला दौर थमने के बाद गर्मी और उमस का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने टीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंचायतवार प्रभावी निगरानी किए जाने का निर्देश दिए हैं। श्री बागड़े आज लोक भवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गांवों को टीबी मुक्त करने के लिए ग्राम सेवकों की जवाबदेही पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि टीबी को आंकड़ों में नहीं बल्कि व्यवहार में हरेक मरीज पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे टीबी को पूरी तरह खत्म किया जा सके। राज्यपाल ने टीबी रोगियों को निक्षय मित्र किट भी वितरित किए। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने कहा कि राज्य को 2030 तक पूरी तरह टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभियान का 90% लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। अधिक जोखिम वाले 11,000 से ज्यादा गाँवों का सर्वे किया गया है। इनमें से 9,000 से ज्यादा गाँवों में विशेष शिविर लगाकर टीबी मुक्त राजस्थान के लिए कार्यवाही की गई है। श्री खींसर ने बताया कि राजस्थान में देश में सबसे अधिक एक्सरे स्क्रीनिंग की गई है। राज्य के एनएचएम निदेशक जोगाराम ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में टीबी मुक्त वार्ड अभियान चालू किया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में जांच के लिए नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है। इसके तहत 2000 रुपए तक की जांच के लिए पहले से मंजूरी नहीं लेनी होगी। वहीं तत्काल जांच के मामलों में टीपीए को 1 घंटे के अंदर और सामान्य मामलों में 3 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी। तय समय सीमा में कोई निर्णय नहीं होने पर आवेदन को ऑटो अप्रूव्ड यानी स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। वहीं आपातकालीन मामलों में पहले की तरह किसी भी तरह की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि टीपीए का मुख्य काम मरीजों के कैशलेस इलाज और बीमा दावों की प्रक्रिया को संभालना है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए ही अस्पताल के साथ मिलकर इसका अनुमोदन करता है। सरकार ने आरजीएचएस से सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों को इसकी कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए हैं। देश भर में जुलाई माह को अंगदान जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में प्रदेश में भी आम लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन सोटो से जुड़े डॉक्टर धर्मेश शर्मा ने बताया कि विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अंगदान से जुड़ी भ्रांतियां दूर की जा रही हैं।
2: हम आमजन के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और उनके मन में कुछ भ्रम होते हैं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ब्रेन डेथ के बाद अगर एक अंगदान होता है तो करीब 9 लोगों को जीवन मिलता है और कई सारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5 लाख लोगों को अंगों की जरूरत है, उसके सामने केवल 20,000 अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं। अगर जागरूकता बढ़े और ब्रांडेड के बाद में अगर उनमें से 50% लोग भी अपना अंगदान की उनके परिजन सहमति दे दें तो हम हिंदुस्तान में लगभग सभी लोगों को जिन्हें अंगों की जरूरत है अंग लगा सकेंगे।
1: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज सिरोही जिले के आबू रोड पहुंचे। उन्होंने मानपुर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। श्री अठावले ने सद्भाव और सामाजिक समरसता को आज के समय की जरूरत बताया। पत्रकारों से बातचीत में श्री अठावले ने कहा कि सरकार जनहित योजनाओं के जरिए हर वर्ग को राहत देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
3: एमएसएमई के माध्यम से छोटे मोटे उद्योग इधर अगर आते हैं तो बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। किसानों की जो फसल है इस फसल को भी मतलब कैसा अच्छा भाव मिले उसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से प्रयत्न होता है। किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और जो बैकवर्ड इलाके है उनको न्याय देने के लिए अगर हमारे पास योजना आती है तो उनको पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ से होगा।
1: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली विशेष रेलगाड़ी आज राजधानी के जयपुर स्थित दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ी तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम और मदुरै लेकर जाएगी। इस मौके पर श्री कुमावत ने कहा कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी नहीं।

0: नहीं हो, इसके लिए यात्रा के दौरान अधिकारी, डॉक्टर्स तथा पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो देख सकते हैं। प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने सहित अन्य विषयों को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ऋण पुनर्गठन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की प्रगति पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने आधुनिक तकनीक के उपयोग और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली के भंडारण के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण है। इससे पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम होगी और डिस्कॉम को हर साल बचत होगी। इसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। कोलंबिया में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। बुकारामंगा में हुई इस प्रतियोगिता में कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर भारतीय टीम के सभी प्रतिभागियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने इसे देश की युवा शक्ति का विज्ञान के प्रति जुनून बताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी देश का गौरव बढ़ाने वाले इन प्रतिभाशाली युवाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राज्य में मॉनसून का पहला दौर थमने के साथ ही गर्मी और उमस का असर फिर से बढ़ गया है। अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिन के साथ ही रात में भी उमस बनी हुई है। फलौदी में कल पारा 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, श्रीगंगानगर और अलवर में भी दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। उधर हनुमानगढ़ में तेज गर्मी और उमस के बीच आज दोपहर बाद मौसम बदला और कुछ देर अंधड़ के साथ झमाझम बरसात हुई। सिरोही में बूंदाबांदी हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी आबूराज की सुंदर वादियों का आनंद ले रहे हैं।
1: सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया। वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। पहाड़ियों पर छाए बादल, धुंध से ढकी वादियां और ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। पर्यटक नक्की झील में नौकायान का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम में आए इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: मौसम विभाग ने 15 जुलाई के बाद मॉनसून का नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके बाद 2-3 दिन में कमजोर पड़े मॉनसून के फिर से रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। आज राजधानी जयपुर और भरतपुर संभाग के 9 जिलों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2-3 दिन में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्र में हल्की बरसात का पूर्वानुमान है। जोधपुर और बीकानेर में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कल जयपुर में राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि ये वेबिनार प्रदेश भर के सभी पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानों के लिए होगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, नवाचारों और सह शैक्षणिक गतिविधियों पर मंथन किया जाएगा। जयपुर शहर में ट्रैफिक प्रबंधन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के साथ नई शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत जल्द ही सिग्नल का फिक्स टाइमर बंद होगा और सड़कों पर लाइव ट्रैफिक के हिसाब से सिग्नल अपने आप बदलेगा। न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
2: 24 घंटे काम करने वाली AI आधारित ये व्यवस्था पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 39 दिनों तक इसका ट्रायल रामबाग सर्कल पर किया गया। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 488,000 से ज्यादा वाहनों ने सुगमता से चौराहा पार किया। ये AI सिस्टम सिर्फ ट्रैफिक ही मैनेज नहीं करता बल्कि

0: अनुशासन भी बनाए रखता है। इस नई तकनीक से वाहनधारियों के समय के साथ ही ईंधन की भी बचत हो सकेगी। जल्द ही इसे पूरे शहर में विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
1: कोटा में आज एक सड़क हादसे में दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं दो अन्य घायल हो गए। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हैंगिंग ब्रिज के पास एक बेकाबू कार के पलटने से हुई, जिसमें कार सवार युवक हादसे का शिकार हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों NRI तक अपनी पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। आज नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति को बनाए रखने के लिए NRI तक पहुंच बढ़ाने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को RBI की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2030 तक राजस्थान को TB मुक्त बनाने का लक्ष्य। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पंचायतवार प्रभावी निगरानी पर जोर दिया। RGHS में नई व्यवस्था आज से लागू। मरीज ₹2000 तक की जांच सीधे करवा सकेंगे। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने सहित अन्य विषयों पर जयपुर में बैठक हुई। और राज्य में मानसून का पहला दौर थमने के बाद गर्मी और उमस का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष कोयल। पिछले महीने कोटपूतली बहरोड जिले में कई सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियां संपन्न हुई। इसके अलावा जिले में मॉनसून ने दस्तक देकर लोगों को गर्मी से राहत दी। इन्हीं सब गतिविधियों के साथ सबसे पहले बात करेंगे दिशा बैठक की। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े विषय रखे। पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों से संबंधित लंबित प्रकरणों पर चर्चा हुई और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 के प्रारूप पर सुझाव लेने के लिए जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि सरकार इस विषय पर सभी वर्गों की राय लेना चाहती है। बैठक में जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें लोगों की राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, बिजली, पंचायत, चिकित्सा और अन्य विभागों से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में लोगों ने शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराया। ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान ग्राम पंचायत पवाना अहीर की एक बुजुर्ग महिला की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी समस्या का समाधान किया गया। तकनीकी कारणों से उनका वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा था। प्रशासन की टीम उनके घर पहुंची और OTP आधारित प्रक्रिया से सत्यापन पूरा किया। इससे उनकी पेंशन फिर से नियमित होने का रास्ता साफ हुआ। इस पहल की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की। संभागीय आयुक्त और जिला प्रभारी सचिव वी सरवण कुमार ने बानसूर उपखंड के भूपसेड़ा गांव में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से योजना का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि इससे खेती के साथ ऊर्जा उत्पादन का भी अवसर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के उपयोग से किसानों की आय बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। जिले में नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इसमें पुलिस और संबंधित विभागों ने मादक पदार्थों की तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध शराब के मामलों की समीक्षा की। अधिकारियों को संयुक्त कार्रवाई जारी रखने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पिछले दिनों अवैध खनन की रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय खनिज विकास और पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक हुई। इसमें पुलिस विभाग, खनन विभाग, वन और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लागू नया सफर योजना की समीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय पर बैठक हुई। अधिकारियों ने बताया कि पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहन खरीदने पर कर, पंजीयन शुल्क और वाहन ऋण पर ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पिछले दिनों पावटा उपखंड के सुजात नगर में नट समाज उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने नट समाज की कला और सांस्कृतिक परंपराओं की सराहना की। श्री बागड़े ने कहा कि शिक्षा समाज के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। प्रकृति को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला पिछले दिनों आयोजित हुई। इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कृषि विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण, जैविक खाद, फसल विविधीकरण और कम लागत वाली खेती की तकनीकों की जानकारी दी। इस महीने जिले में मानसून ने दस्तक दी। कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। हालांकि फिलहाल मानसून कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियां थमी हुई है। इसके साथ ही कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, साल 2030 ताई राजस्थान ने टीबी मुक्त बनावण रो लागस। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पंचायतवार असरदार निगरानी माथे जोर दियो। RGHS माय नुआ बंदोबस्त आज लागू। मरीज 2000 रुपया तहरी जांच सीधी करा सकेला। प्रदेश ने ऊर्जा हल्का माय आत्मनिर्भर बनावण और डिस्कोमरी माली हालात मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा माथे जयपुर माय मीटिंग भी। और राज्य माय मानसून रो पहलो दौर थमण रे पछे गर्मी और उमस रो असर बढ़ियो। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े टीबी मुक्त राजस्थान सारू पंचायतवार असरदार निगरानी क्रिया जाऊन सारू निर्देश दिया है। श्री बागड़े आज लोक भवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन री प्रगति री समीक्षा कर रिया हा। वना गांवा ने टीबी मुक्त करण सारू ग्राम सेवकारी जवाबदेही माथे जोर दियो। राज्यपाल कहो के टीबी रा आंकड़ा माय नहीं बल्कि व्यवहार माय हर एक मरीज माथे ध्यान देवन री जरूरत है जीनू टीबी रो पूरी तरह खात्मो करियो जा सके। राज्यपाल टीबी रोगिया ने निक से मित्र की टी बांटिया। ई मौके चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो कि राज्य ने साल 2030 ताई पूरी तरह टीबी मुक्त कर दिया जाएला। वना बतायो कि राजस्थान में अभियान रो 90% लगस पूरो कर लीजियो है। बत्ती जोखिम वाला 11,032 गाँव रो सर्वे करीजियो है। इन मायो 9,032 गाँव माए खास शिविर लगा टीबी मुक्त राजस्थान सारू कार्रवाई करीजी है। श्री खींवसर बतायो कि राजस्थान में देश में सब 32 एक्सरे स्क्रीनिंग करी जी है। राज्य रा NHM निदेशक जोगाराम बतायो कि शहरी स्थानीय निकाय में टीबी मुक्त वार्ड अभियान चालू करियो जायला। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में जांच सारू नुआ बंदोबस्त आज लागू हो गया है। इन रे तहत 2000 रुपया तहरी जांच सारू पहला मंजूरी नहीं लेवनी वेला वठे तुरंत जांच रा मामला माए TPA ने 1 घंटा माए और दूजा मामला माए 3 घंटा माए मंजूरी देवनी वेला। ते भगत माए कोई फैसलो नी होन माथे अर्जीदार ने ऑटो अप्रूव्ड मतलब खुद मंजूरी मानी जाएला। वठे इमरजेंसी मामला माए पहला री तरह किणी तरह री पहला मंजूरी री जरूरत नी वेला। ध्यान जोग है कि TPA रो खास का मरीजा ने कैशलेस इलाज और बीमा दवा री प्रक्रिया ने संभालनो है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर TPA अस्पताल रे साथे मिलने इन्हें मंजूरी करे है। सरकार RGHS से जुड़िया सगड़ा प्राइवेट अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर ने इनरी कड़ाई पालना करने का निर्देश दिया है। देश भर में जुलाई महीना ने अंगदान जागरूकता महीना रा रूप में मनायो जावे है। ई कड़ी में प्रदेश में लोगों ने अंगदान स्वरूप प्रेरित कर जावे।
3: राज्य अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन सोटों जुड़िया डॉक्टर धर्मेश शर्मा बतायो कि न्यारी न्यारी जागरूकता गतिविधियां री मार्फत अंगदानों जुड़ी गलत फहमियां दूर करी जायला।
4: हम आम जन के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और उनके मन में कुछ भ्रम होते हैं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ब्रेन डेथ के बाद अगर एक अंगदान होता है तो करीब 9 लोगों को जीवन मिलता है और कई सारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5 लाख लोगों को अंगों की जरूरत है, उसके सामने केवल 20,000 अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं। अगर जागरूकता बढ़े और ब्रांडेड के बाद में अगर उनमें से 50% लोग भी अपना अंगदान की उनके परिजन सहमति दे दें तो हम हिंदुस्तान में लगभग सभी लोगों को जिन्हें अंगों की जरूरत है अंग लगा सकेंगे।
3: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज सिरोही जिला रा आबू रोड पुग्या वणा मानपुर माए भगवान बुद्ध री मूर्त रो अनावरण करियो। ई मौके वणा भगवान बुद्ध रा शांति करुणा और मानवता रा संदेश ने जन जन ताई पुगाउन री अरज करी। श्री अठावले सद्भाव और सामाजिक समरसता ने आज रा भगत री जरूरत बताया। खबर नविशा साथे बतलमाए वणा कहो के सरकार जनहित योजना री मार्फत हर तबका ने राहत देवन री कोशिश कर रही है। वणा कहो के MSME सेक्टर ने मजबूत करने रोजगार रा मौका बधाया जा रहा है।
5: MSME के माध्यम से छोटे मोटे उद्योग इधर अगर आते हैं तो फिर रोजगार मिल सकता है। किसानों की जो फसल है इस फसल को भी मतलब कैसा अच्छा भाव मिले उसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से प्रयत्न होता है। किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। हम किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और जो जो बैकवर्ड इलाके है उनको न्याय देने के लिए अगर हमारे पास योजना आती है तो उनको पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ से होगा।
3: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली खास रेलगाड़ी आज जयपुर रा दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन रवाना हुई। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत इन्हें हरी झंडी दिखा रवाना करिया। आ रेलगाड़ी तीर्थ यात्रियों ने रामेश्वरम और मदुरई ले जावेला। ई मौके श्री कुमावत कहो कि तीर्थ यात्रियों री सुविधा सारू के इंतजाम करी जा है। बुजुर्ग ने किणी तरह की परेशानी नहीं होवे इस सारू यात्रा के दौरान अहलकार डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेला। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा xhandle@airnews_jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इन साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। प्रदेश ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भरता का तेजियों कदम बढ़ा रियो है। इस सारू डिस्कोमरी माली हालात ने मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा ने लेर आज जयपुर माए समीक्षा मीटिंग भी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री अगुवाई माए भी ई बैठक माए कर्ज पुनर्गठन बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर री प्रगति माथे चर्चा करी जी। मुख्य सचिव आधुनिक तकनीक ने काम माए लेवण और अक्षय ऊर्जा परियोजनावा ने भगत सर लागू करण री जरूरत बताई। वणा कहो कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और दूजी सौर ऊर्जा परियोजनावा मिलन वाली बत्ती री बिजली भंडारण सारू बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम महत्व है। इणु पीक आवर्स माए महंगी बिजली खरीदने री जरूरत कम होवेला और डिस्कॉम ने हर साल चोखी बचत वेला इन रो फायदो उपभोक्तावा ताई पुगेला। कोलंबिया माए भी 56वीं अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड माए भारतीय टीम सोना रो तमगो हासिल करियो है। बुकारा मंगा माए भी ई होड माए कनिष्क जैन रिद्धेश अनंत बैडाले ऋषित गर्ग श्रीष सुरैया और स्वरित जोशी भेड़ारिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई कामयाबी माथे भारतीय टीम रा सगला प्रतिभागियां ने बधाई दी है। श्री मोदी इन्हें देश री युवा शक्ति रो विज्ञान रे प्रति जुनून बताया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई देश रो मान बढ़ावन वाला आ हुनरवान नौजवाना ने बधाई देता वारा चोखा भविष्य री कामना करी है। मौसम राज्य में मानसून रो पहलो दौर थमण रे साथ ही गर्मी और उमस रो असर फेरू बद गयो है। गणकरी थोड़ा तापमान माए बढ़वार भी है। दिन रे साथ ही रात माए उमस बनी है। फलोदी माए काले पारो 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज करीजियो। इनके अलावा बीकानेर जैसलमेर चूरू श्रीगंगानगर और अलवर माए दिन रो तापमान 38 डिग्री सेल्सियस ऊपर रियो। उठीने हनुमानगढ़ माए तेज गर्मी और उमस रे बीच आज दोपहर पछे मौसम बदलियो और कुछ देर अंधड़ रे साथ ही झमाझम बिरखा भी। सिरोई में छाटा छिड़को हो। मारा खबरनावीश बतायो के आ दिना घनी तादाद में सैलानी आबूराजरी सुंदरवादियां रो लुत्फ उठा रिया है।
6: सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया। वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। पहाड़ियों पर छाए बादल, धुंध से ढकी वादियां और ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। पर्यटक नक्की झील में नौकायान का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम में आए इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
3: मौसम महकमो 15 जुलाई रे पछे मानसून रो नुआ सिस्टम सक्रिय होने री आस जताई है। इन रे पछे 2-3 दिन में कमजोर पड़ो मानसून फिर गति पकड़न रा आसार है। आज जयपुर और भरतपुर संभाग रा 9 जिला में कटे कटे छुटपुट बिरखा वह सके है। वठे आवता 2-3 दिन में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आरएसआर रा हल्का में हल्की बिरखा री आस है। जोधपुर और बीकानेर में धूल भरी आंधी चालन रा आसार है। जयपुर शहर में ट्रैफिक बंदोबस्त सारो आधुनिक तकनीक रह साथ है नौवीं शुरुआत होवन जारी है। इन रे तहत बेगाई सिग्नल रो फिक्स टाइमर बंद वेला और सगड़का माथे सीधा ट्रैफिक रा हिसाब हो सिग्नल अबे अपने आप बदलेला। न्यूज डेस्क हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजी री रिपोर्ट।
0: 24 घंटे काम करने वाली AI आधारित ये व्यवस्था पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 39 दिनों तक इसका ट्रायल रामबाग सर्कल पर किया गया। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 488,000 से ज्यादा वाहनों ने सुगमता से चौराहा पार किया। ये AI सिस्टम सिर्फ ट्रैफिक ही मैनेज नहीं करता बल्कि अनुशासन भी बनाए रखता है। इस नई तकनीक से वाहनधारियों के समय के साथ ही ईंधन की भी बचत हो सकेगी। जल्द ही इसे पूरे शहर में विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
3: स्कूल शिक्षा महकमा कानियों काले जयपुर में राज्य स्तरीय वेबिनार रो आयोजन कर योजायला। स्कूल शिक्षा महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव बतायो के आ वेबिनार प्रदेश भर रा सगला PM श्री स्कूल रा प्रधान आसारू वेला। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होवन वाला ई कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने असरदार लागूकरण नवाचार और सह शैक्षणिक गतिविधियां माथे मंथन कर योजायला। वस्त्र प्रदर्शनी भारत टैक्स 2026 काले नवी दिल्ली में शुरू वेला। देशरी सब मोटी वैश्विक वस्त्र नुमाइश रो आयोजन भारत मंडप में करो जायला। 4 दिन री नुमाइश में कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार रा हल्का में भारत री बदती अगुवाई रो प्रदर्शन करो जायला। वो निर्माताओं, निर्यातका, वैश्विक खरीदार, निवेशका, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय नुमाइंदा मंडल, कारीगरा, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं ने एक मंच माथे लावेला। कोटा में आज एक सड़क हादसा में 2 लोगों की मौका माथे मौत हो गई, वठे 2 दूजा घायल हो गया। हादसों राष्ट्रीय राजमार्ग 27 माथे हैंगिंग ब्रिज कने एक बेकाबू कार रे पलट जावनु भी हो। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिरू सुन ली रहो। साल 2030 ताई राजस्थान ने TB मुक्त बनावण रो लगस। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पंचायतवार असरदार निगरानी माथे जोर दियो। RGHS माए नुआ बंदोबस्त आज लागू। मरीज 2000 रुपया ताई री जांच सीधी करा सकेला। प्रदेश ने ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भर बनावण और डिस्कोमरी माली हालात मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा माथे जयपुर माए मीटिंग भी। राज्य माए मानसून रो पहलो दौर थमण रे पछे गर्मी और उमस रो असर बढ़ियो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।
8: ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रहा सकले भाई ना मन भाई रा घना घना राम राम। आज बाबा बात कर दे कि अपोरे जो कोई बेरोजगार लोग हैं उन्होंने रोजगार सरकार की योजनाओं चला रही। तो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो कोई छोटा और लघु उद्योगों की स्थापना और विस्तार और आधुनिकरण के लिए कई वित्तीय और तकनीकी योजनाओं चलाई जा रही है। प्रमुख योजनाओं की जानकारी जो है यह है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिन्हें आप PMMY योजना को सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सबसे लोकप्रिय योजना है। इसके तहत बिना किसी गारंटी रे 10 लाख रुपए तक रो लोन प्रदान किए जावे। ईर अंतर्गत शिशु नौ 50,000 तक रो लोन, किशोर नौ जो है 50,000 से 5,00,000 तक रो लोन और तरुण जो को है 5,00,000 से 10,00,000 तक रो लोन दी जाए। ये प्रकार से बड़गांव में बॉर्ड दिए गए और अलावा दूसरी योजना है प्रधानमंत्री

लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक रो बैंक लोन दिए जाए। और अलावा है उद्योगिनी योजना, यह योजना महिलाओं और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए एक आर्थिक रूप से सशक्त बनावे। इसके अंतर्गत 18 से 55 वर्ष तक की महिलाओं को 3 लाख रुपए तक रो लोन और 30% तक की सब्सिडी प्रदान की जाए। और अलावा है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। ये योजना का मुख्य लाभ यह है कि इसके माध्यम से छोटे उद्योगों ने बिना किसी संपत्ति गारंटी रहे 5 करोड़ रुपए तक लोन प्राप्त करने की सुविधा मिले। इस वास्ते अधिक जानकारी और आवेदन प्रक्रिया या नजदीकी बैंक शाखा से विवरण जानने लिए आप अधिकाधिक MSME मंत्रालय की वेबसाइट में है उद्यमी मित्र पोर्टल की मदद भी हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है सरकार कई प्रकार की योजनाओं चलाई है जिसे बेरोजगार युवाओं रोजगार करने वास्ते अवसर प्रदान करे। तो आप भी जो है ये योजनाओं का फायदा लो और कई योजनाओं के साथ जुड़ करके और अपना जो है रोजगार शुरू करो। तो आप आगे भी बड़े बात कर सकते भैया लोग पढ़ा।

ले गेरा बाझतुरी अमला बेला

गेरा बाजतुरी अमला बेला पला

कौन बहुत ही बढ़िया लोग इसमें हमारा बात कर दी कि आप पौधों को पशुपालन कराएं और पशुओं वास्ते पशुओं की देखभाल भी ऊपर वास्ते आवश्यक है। तो ये वास्ते जो है कि आप देखो जैसलमेर एक गाय विशेष रूप से गोवंश है थारपरकर गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें से मुख्य रूप से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत नस्ल सुधार सरकारी डेयरी फार्मों की स्थापना और किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देने वास्ते वाली योजनाएं भी शामिल हैं। थारपरकर गाय के संरक्षण के लिए प्रमुख सरकारी योजनाओं जो है वो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यह केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है जिसके मुख्य उद्देश्य स्वदेशी नस्लों जो थारपरकर गिर और साहिवाल को विकास और संरक्षण करना है। इसके तहत अच्छी नस्ल के थारपरकर जानवरों वितरण किए जाए और थारपरकर जैसी उच्च अनुवंशिक गुणों वाली जो गायों के संवर्धन के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा घर द्वारा तक पहुँचाई जाए। थारपरकर नस्ल की गायों के संरक्षण हेतु शोध कार्य भी किए जाए। सरकारी प्रजनन और अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत थारपरकर मूल रूप से थार मरुस्थल जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर नस्ल है। इसे संरक्षण के लिए सरकार द्वारा विशेष अनुसंधान केंद्र चलाया जा रहा है। काजरी जो जोधपुर में और राजूबाग बीकानेर के अंतर्गत थारपरकर संरक्षण और उच्च गुणवत्ता वाली नंदी तैयार करने के प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसलमेर में चांदन और बीकानेर में बीचवाल में सरकारी थारपरकर गोवंश संवर्धन केंद्र स्थापित है जिसकी जगह जा रही है नस्ल को सुरक्षित रखे जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों में नंद बाबा दुग्ध मिशन जैसी योजनाओं के तहत स्वदेशी उन्नत नस्लों थारपरकर गिर साहिवाल की खरीद उन्हें किसानों ने भारी सब्सिडी दी जाए। इसका उद्देश्य ये गायों की संख्या में वृद्धि करना ताकि ग्रामीण स्तर में दूध उत्पादन में बढ़ाया जा सके। थारपरकर और अन्य स्वदेशी गायों के संरक्षण हेतु निराश्रित गोवंश न पालने के लिए किसानों पशुपालकों को आर्थिक सहायता दी जाए। इस प्रकार से योजनाओं के तहत प्रत्येक निराश्रित गाय के भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा लगभग 1500 रुपया प्रति गोवंश सीधे पशुपालक के खाते में ट्रांसफर किया जाए। थारपरकर गोवंश को संरक्षित रखना और उसके दूध उत्पादन की क्षमता को वैज्ञानिक तरीके से बेहतर बनाने वास्ते सरकार द्वारा कई अनुसंधान व फार्म भी स्थापित किया गया है। थारपरकर गायों के संवर्धन और बेहतरीन रखरखाव वास्ते कई प्रकार से योजनाएं भी चलाई जा रही है। थारपरकर गाय भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय स्वदेशी दुधारू गोवंश नस्ल में से एक है। ये मुख्य रूप से इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम खर्च में अधिक दूध उत्पादन वास्ते जानी जाए। मुख्य पहचान और शारीरिक बनावट में जो रंग है ये नस्ल रंग सफेद और हल्को भूसर ग्रे हुए और सांडों ने गर्दन और कुबड़ रो हिस्सों थोड़ो गहरों और ग्रे हुए। मध्यम कद काठी और चौड़ो माथो और मध्यम आकार में मुड़ोड़ा स्विंग इसकी मुख्य पहचान है। यह मरुस्थलीय क्षेत्र की अत्यधिक गर्मी और कड़ाके की ठंड दोनों आसानी से सहन कर सके। थारपरकर गाय प्रतिदिन औसतन 8 से 15 लीटर तक दूध देवे और अच्छी देखरेख में क्षमता और भी अधिक हो जावे। ये दूध औषधीय गुणों से भरपूर A2 श्रेणी होवे जो स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम मानी जावे। कम लागत में यह गाय सूखो चारों और स्थानीय वनस्पति खाकर भी अच्छे दूध देने में सक्षम हुई और जिसे पशुपालक को बेहद ही कम खर्च उठाना पड़े। ये नस्ल नाम राजस्थान के थार मरुस्थल थारपरकर जिलों जो हमें पाकिस्तान में नाम से पड़ी हो। भारत में मुख्य रूप से राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर और गुजरात के कच्छ क्षेत्रों में पाई जाए। तो इस प्रकार से थारपरकर गाय के संरक्षण हेतु सरकार कई प्रकार की योजनाओं चला रही है। तो आप आगे भी बड़े बात कर सो लेकिन पहले सुनिए बढ़िया एक है लोक भजन।

0: रघुपति झगड़ो बदे हो गए मई को दान।
1: Thank you.

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत और आज हम आपको सुनवाएंगे बीवी जोग का ये वायलन वादन।

0: عبارت شده است.
1: جسمت که حتم رو جد.
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत जिसमें आपने सुना वायलिन वादन पंडित वीजी जोग का। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मैं चुप रहूंगी का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

अभी आपने मोहम्मद रफी की आवाज में सरगम फिल्म का ये गीत सुना। आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है दो आंखें बारह हाथ।

0: पल थी सबकी बिगड़ी जहां
1: ढूंढा जमीन आसमान मेरा तो सब कुछ यहां।

0: चाय बाबूजी।
1: चाय सिंह, ये आवाज किसकी?
0: इसी गांव की लड़की है, रोज सुबह गाना गाकर गांव को जगाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर ये गाना ना गाए तो
1: शायद सूरज उदय नहीं होगा। नाम क्या है इसका?
0: रूपा।
1: जिसकी आवाज इतनी सुंदर है उसका रूप कितना सुंदर होगा।

0: अभी आपने सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत सुना जिसे गाया था लता मंगेशकर ने?
1: अम्बे माँ बोलो, जय दुर्गे माँ बोलो, जय अम्बे माँ।

0: मुझे बदन मिले मान रिपा
1: मुझे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 8:30 हुए हैं, समय हुआ है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आइए आपको सुनवाते हैं ये गजलें जगदीश सिंह की आवाज में। एल्बम का नाम है संवेदना।

जिंदगी की शोर रिश्ते नातों की सोच के रास्ते पर जहां पहुंचकर इंसान एकाकी हो जाता है तब जाग उठता है कवि, फिर शब्दों के रंगों से जीवन की अनोखी तस्वीरें बनती हैं, कविताएं और गीत सपनों की तरह आते हैं और कागज पर हमेशा के लिए अपने घर बना लेते हैं। अटल जी की ये कविताएं ऐसे ही पल ऐसे ही क्षणों में लिखी गई हैं, जब सुनने वाले और सुनाने वाले में तुम और मैं की दीवारें टूट जाती हैं, दुनिया की सारी धड़कनें सिमट कर एक दिल में आ जाती हैं और कवि के शब्द दुनिया के हर संवेदनशील इंसान के शब्द बन जाते हैं।

इमरजेंसी लगी थी, सारा देश एक जेल खाने में बदल दिया गया था, स्वतंत्रताओं का अपहरण हुआ था, बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए थे, जेलों में बंद किए गए थे। जब एक साल बीत गया तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया, एक बरस बीत गया, एक बरस।

जो कल थे वे आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। सत्य क्या है? होना या न होना, या दोनों ही सत्य हैं? जो है उसका होना सत्य है, जो नहीं है उसका न होना सत्य है। मुझे लगता है कि होना न होना एक ही सत्य के दो आयाम हैं। ये सब समझ का फेर बुद्धि के व्यायाम है।

इसी समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों की व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता

0: दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट

0: सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी
1: ये तैयार करके दूंगा जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
4: Provisionally, we're looking at a 10% increase.
5: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
4: Other operating income is not included.
2: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध IED विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
7: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है।

0: राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्य जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस, इंडिया एंड यूएस एंगेज फॉर बैलेंस्ड एंड कमर्शियली मीनिंगफुल ट्रेड पैक्ट, सेज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। This is lead of reports of deadlock in trade talks. India's total exports jumps over $232 billion, registering growth of 11.37% during first quarter of current fiscal. Former AAP leader Tahir Hussain and 4 others convicted for killing of IB officer during 2020 Delhi riots. The US and Iran exchange another wave of strikes as dispute over control of Strait of Hormuz raises tension in the region. In cricket, India scripts history, beating England by 270 runs in first ever women's test at the Lord's. And 16 Indian boxers enter finals at Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta. And now the news in detail. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers. He said he had a fantastic meeting with US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Greer said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful, and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers, and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. He added that both sides also exchanged views on the India-EU FTA and explored ways to deepen business ties and expand India's commercial engagement with Spain as a valued partner. Mr. Goyal is currently on a 5-day visit to Spain, Belgium and Finland from today.
3: India's total exports during April to June this year is estimated at over 200

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में आखिर क्यों फिल्म का ये गीत सुना? श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सारंगी वादन। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं, समय हुआ है कार्यक्रम रूपक का, और आइए आपको सुनवाते हैं ये रूपक, एक शब्द की पूरी किताब।

एक औरत हूँ और जीवित रहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे जन्म से ही स्नेह, प्रेम और ममता की घुट्टी पिलाई जाती है और पिलाया जाता है दया, सहानुभूति, त्याग और कष्ट सहने की ताकत का घोल। पुरुष प्रधान समाज की असामान्य धारणाओं ने मुझे बना दिया है एक छोटी सी लकीर। मुझसे अपेक्षा की जाती है व्रत, उपवास, त्योहार, संस्कृति और मर्यादा की रक्षा की। छीन लिए हैं मेरे निर्णय के अधिकार, यह खुला आसमान और मुझे कैद कर लिया है रिवाजों के रोशनीहीन बंद कमरों में। मैं हो गई हूँ अस्मिताहीन, बिल्कुल नगण्य, उपेक्षित,

0: आज तो बराबरी के सारे अधिकार मिले हैं। हमारा संविधान स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं करता। कितने ही कानून बने हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे विकास के लिए। 30% आरक्षण है तुम्हारा पंचायतों में, बस से लेकर नौकरियों तक में आरक्षण।
1: हाँ, ये भी एक सच है, लिखा हुआ सच। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लड़कियों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वे लड़की के रूप में जन्म लेती हैं।
2: राष्ट्रीय पोषण मॉनिटरिंग ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि लड़कियों को जितनी कैलोरी चाहिए उसका 2/3 ही उनको मिलता है।

0: मारने के तरीके भी भीषण रहे हैं। कहीं पानी की तगाड़ी में डुबाकर, तो कहीं जहरीली बूटी पिलाकर, कहीं गला दबाकर, तो कहीं भूखा रखकर, तो कहीं खाट के पाए के नीचे रखकर, नारी हत्या का ये सिलसिला, अंधविश्वासों की काली छाया, नारी विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा रही है। मैंने एक लेख में पढ़ा कि दक्षिण भारत के एक हिस्सों में तो दूसरी या तीसरी बेटी को जहरीली बेरी खिलाकर मार दिया जाता था, और इसी तरह राजस्थान में, जयपुर राजस्थान के गांव चाकसू में कार्य कर रहे शरद जोशी ने अपने अनुभव से जाना है।
1: इसमें कुछ ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं कि वेस्टर्न राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ की कुछ जातियों में बच्ची को गंगा स्नान करवा के, जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं, उसको एक बाल्टी या तगारी में पानी भर के उसको डुबाया जाता है। जो ये होता है कि अगर वो बच्ची जिंदी रह गई तो वो एक प्रकार के ईश्वर की कृपा है, और अगर उसकी जान चली गई तो वो भी ईश्वर की स्वीकृति है। मतलब इस प्रकार की मान्यताएं, इस प्रकार की परंपराएं समाज में पड़ी हुई हैं, जो समाज के समाज प्रमुख भी इसको एक बहुत ही नियमित चीजों में जोड़ते हैं, वो इसको अन्याय के रूप में बिल्कुल नहीं मान रहे। और ये सब चीजें हम ऊपर बैठ के तो परिवर्तन नहीं ला सकते, जरूरी है कि हम उनके साथ बैठ के इन चीजों की बारीकी से बातचीत करें और इसका रास्ता ढूंढें। और उसी के साथ हमने देखा कि हम जब जाति प्रमुखों के साथ बात कर रहे हैं, माता पिता के साथ बात कर रहे हैं, गांव के दाइयों के साथ बात कर रहे हैं, गाँव की माताओं के साथ बात कर रहे हैं, दादी माँ के साथ बात कर रहे हैं, तो वो सब इस बात को मानती हैं कि बहुत अन्याय है, लेकिन उनमें इस अन्याय को लड़ने की जो हिम्मत है, वो जो पुरुष प्रधान समाज है उसने इतना ज्यादा दबा रखा है कि वो उससे बिल्कुल उभर के बाहर आना ही नहीं चाहती। शिक्षा के क्षेत्र में देखा क्या कारण है, बालिकाओं की शिक्षा नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य क्षेत्र में देखा किस प्रकार से उनके साथ भेदभाव होता है, स्वास्थ्य में काफी चीजें ऐसी सामने आई जिसको कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शुरू में जब टीकाकरण का काम चालू हुआ तो बच्चों को टीका इसलिए नहीं लगाया जाता था कि उनको बुखार आ जाता है, और बालिकाओं को लगवा दिया जाता था। अगर आहार की बात करें तो बच्चे के आहार का प्रकार अलग हुआ, समय की बात करें तो बच्चे को समय पर आहार दिया जाता है, बच्चे को आहार देने का कोई समय नहीं।
0: और इसीलिए गुलबर्गा कर्नाटक की सरोजा और महाराष्ट्र की मंदा की चाहत है,
2: मेरे को भी लड़का होना का काश है।
0: अच्छा क्यों है आपको बताओ?
2: ये लोग सब बोलते हैं लड़कियां हैं लड़का एक होना हमारे आदमी एक ही है, फिर हमको भी एक तो लड़का होना है।
3: मुझे ऐसा लगता है कि मैं, काश मैं लड़का होती तो मैं भी कुछ बन जाती। कभी कभी मम्मी सोचती है कि भगवान मुझे क्यों तीन तीन लड़कियां दे दी, काश मुझे भी एक दो लड़के और एक लड़की दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता।

लड़का होने की आकांक्षा खुला जीवन जीने की पहचान है और लड़की का जन्म उदासी लेकर आता है। सदी के अंतिम दशक की नई दुनिया में खड़े हैं हम, जहां चिकित्सा विज्ञान के जादुई स्पर्श से मरता हुआ व्यक्ति भी जी उठता है, वहीं बच्चे के जन्म की जानकारी उसे गर्भ में ही मार डालने में सक्षम है। कैसी प्रगति की है हमने, जो उपकरण रोगों की

0: जानकारी के लिए बनाए गए वे ही हत्या की भूमिका निभाते हैं। एमनियोसिंथेसिस टेस्ट हत्या के उपकरण के रूप में चर्चित होता जा रहा है। डॉक्टर फैयाज जयपुर की वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ हैं। उनका कहना है
1: ये सेक्स डिटर्मिनेशन का आविष्कार हुआ था, ये इसलिए नहीं हुआ था कि ये सेक्स पता चले। ये लोग क्या करते थे, लाइकरेमिया एक तरह का पदार्थ होता है जो यूट्रस में होता है, उसमें को निकाल करके और टेस्ट करके वो ये पता लगाते थे कि जो बच्चा है उसमें कोई किसी प्रकार का अंदर से रोग तो नहीं है, उसके क्रोमोसोम्स ठीक है या नहीं है, या किसी परिवार में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, उस कमी का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब ये पता लगा कि इससे कि मेल और फीमेल सेक्स का भी पता लगाया जा सकता है, तो लोगों ने उसको उस रूप में अपना लिया।
0: ये भी एक चौंकाने वाला तथ्य है कि एक अध्ययन में एमनियोसिंथेसिस टेस्ट के बाद हुए 8,000 गर्भपातों का लेखा जोखा किया गया तो पता लगा कि इनमें 7,999 गर्भपात मादा भ्रूणों के थे।
2: वर्ष 1984 में अकेले महाराष्ट्र में 40,000 बेटियों की भ्रूण हत्या हुई थी।
3: ये वैज्ञानिक जांच पड़ताल व्यापार बन गई है, यहाँ तक कि इसके बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, ₹500 अभी या 50,000 बाद में।
0: समाज सेवी संस्थाओं ने इस टेस्ट के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी है। दिल्ली की एक संस्था है सहेली, जो इस दिशा में भी काम कर रही है।
4: ये जो तकनीकों का जो जैसे एमनियोसिंथेसिस की तकनीक है, इसका इतना फैल गया है कि गांव-गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे साफ पीने के पानी की सुविधाएं नहीं है, जहाँ पे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, माओं के स्वास्थ्य के लिए साधारण भी सुविधाएं प्राप्त नहीं है, वहां पर भी गर्भ जल प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त हो गई है। तो ये एक पूरा उद्योग खड़ा हो गया है जो कि बिल्कुल प्राइवेट मेडिकल सेक्टर ने इस चीज को बहुत ही बढ़ावा दिया है, खुले आम उसका प्रचार करते हैं, पर्चों से लोगों को अन्य तरीकों से बताने को कि देखिए ऐसी सुविधा प्राप्त है, लिंग जांच की सुविधा प्राप्त है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए।
0: ये कष्टदायी काम है, पूरी तरह सुरक्षित भी नहीं है गर्भवती माँ के लिए, तरह तरह के खतरे भी हैं इसमें। हमारे देश में जहाँ पहले से ही 70% महिलाओं में खून की कमी है, बार बार प्रसव पीड़ा उन्हें मृत्यु के कगार तक पहुँचा देती है।
2: इस टेस्ट से गर्भपातों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। दुनिया में दूसरे नंबर पर है हमारे देश में प्रसव में मरने वाली माताओं की संख्या।
3: लगभग 500 या और अधिक माताएं मर जाती हैं प्रति 1,00,000 पर।
4: देखिए, जहां तक डॉक्टरों का सवाल है, वो अगर सच्ची में औरतों के प्रति अगर उनकी कोई भावना होती, वो अगर उनके उनकी जो वेलबींग है या उनके हित में जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते, तो वो कई कुछ कर सकते थे, वो बता सकते थे बल्कि कि बार बार इस तरह से औरत का गर्भपात कराना उसकी सेहत पर क्या बुरा असर करता है।
5: मैंने आपकी बातें बड़े ध्यान पूर्वक सुनी। आपने कभी उन लोगों के मन को भी टटोला है जो अपने घर में अधिक लड़कियों के जन्म के कारण दुखी हैं? हमारा समाज, हमारी व्यवस्था, हमारी मानसिकता इसके लिए जिम्मेदार है। बेटी की शादी का नाम आते ही साधारण आमदनी वाले परिवार के मुखिया के सामने अंधेरा छा जाता है। बेटी खुद सोचने लगती है, काश मैं पैदा ही ना होती, बड़ी होकर दुख क्यों पाए, और फिर परिवार को सीमित रखने में भी तो इससे मदद मिलती है। आप बताइए, दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, कितने ऐसे लोग हैं जो संतान के रूप में एक लड़का नहीं चाहते?
4: पर ये कहने की बजाय कि आप जो भी आपके बच्चे होते हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, आप दो बच्चे पैदा करके वहां पे अपने परिवार को सीमित रखिए, वो इसी बात को बार बार बढ़ावा देते चले जा रहे हैं कि आप लड़के ही पैदा करते जाइए तो ठीक है, जिन लोगों के पास में एक लड़का है या दो लड़के हैं वो तीसरा अगर उनको लड़का होता है तो उसको तो कभी गर्भपात करने की सोचते नहीं है।

0: औरत पर गृहस्थी का बोझ, बच्चों का लालन पालन, ऊपर से अनचाहे गर्भ, यानी औरत न हुई मशीन हो गई।
1: देखिए क्या रखा है इस औरत मर्द के झगड़े में, छोड़िए इसे। आप समझती हैं कि पुरुष कमाता नहीं है, घर की सुरक्षा नहीं करता, मेहनत मजूरी नहीं करता, बोझ नहीं उठाता, उसे अपनी संतान की चिंता नहीं होती, वो भी मशीन है।
0: है, वो भी मशीन है, हम सब मशीन है, एक परकोटे में घूम रहे हैं। लेकिन औरत को कुदरत ने मर्द से कम बलशाली बनाया है, उसके शरीर की रचना पुरुष से भिन्न भी है। गुलबर्गा की सुकुबाई और हसीना बेगम का दर्द सुनिए।
2: कितनी उम्र में शादी हुआ है आपका?
3: 12
2: और उसके बाद कितने बच्चे हैं आपके?
3: 5 है।
2: क्या उम्र है?
3: एक 4 बरस का है, एक 2 बरस है, एक 7 बरस है, एक 3 बरस है, अभी है छोटे, इसको 16 महीना हो गए।
2: हसीना बेगम कितने बच्चे?
3: 4 बच्चे।
2: कितना लड़का लड़के?
3: 1 लड़का 3 लड़कियाँ।
2: उम्र क्या है बच्चों की?
3: 4 साल की है, 3 साल का है, 1.5 साल की है, 18 दिन की। एक बच्ची हुई तो मैं संभाली भी नहीं, मेरे को मालूम भी नहीं,
2: मालूम नहीं।
3: अब दूसरा होने के बाद बड़ा तकलीफ हुई, तो संभालने में। तीसरी हूँ तो बस अब्बा अम्मा भाई संभाले।
0: मानसिकता का एक और उदाहरण, हम सब जानते हैं कि परिवार को सीमित रखने के लिए जो ऑपरेशन होते हैं उनमें पुरुष का ऑपरेशन आसान होता है, फिर भी उसका बोझ पड़ता है औरतों पर। गुलबर्गा के G.D. गोडसे का कथन है ये।
4: हमारा अनुभव ऐसा है कि इस साल में हमने 600 तक ऑपरेशन किए हैं, उसमें सिर्फ एक ही एक मेल ऑपरेशन किया, मास्टेक्टमी, बाकी सब औरतों के ऑपरेशन हुए हैं।
5: क्यों मिली मुझे औरत की जिंदगी?
0: सुबह से शुरू होता है मेरे काम का चक्र, सूरज भी निकलता नहीं कि मैं उठ जाती हूँ। दो चादरों का काम, घर का काम, बच्चों की जिम्मेदारी, फिर खेत का काम, सांझ पड़े खाना, चूल्हा चक्की, कोई छुट्टी नहीं मेरी, कोई महत्व नहीं मेरा। क्यों ब्याही मुझे माँ तुमने इतनी जल्दी, कि पूरी हुई जवानी में 25 की होते होते बन गई 5 बच्चों की माँ। ये बची ही कहा और ये इंसान।
6: इसी जल्दी जल्दी गर्भ धारण से 15 से 19 आयु वर्ग में मृत्यु दर बहुत ऊंची है महिलाओं की।
7: लड़कियों के प्रति हम लगभग लापरवाह हैं। लड़कों के मुकाबले खाना भी कम मिलता है लड़कियों को।
0: मंदा का बचपन इसी उपेक्षा भरे व्यवहार में बीता है।
8: भाई बीमार पड़ता तो मम्मी पापा बोलते थे, भाई अब तो पैसा है नहीं, चलो कहाँ कहाँ से पैसे लाए, क्या करें। मम्मी पापा जाके अपने उधार पैसे लाके 300-400 रुपए लाके अपने बेटे को दवाई गोलियां वगैरह सब लाके उनको ठीक ठाक करते थे। और लड़की बीमार पड़े तो लड़के के लिए बोलते थे, कोई बात नहीं हो जाएगी, ठीक जाओ इसके लिए 25 पैसे की एक गोली ला के दो, एक गोली ला के लड़की ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? मैं सोचती थी भगवान वो भी तो, मैं भी तो लड़की हूँ, वो भी तो लड़का, ऐसे क्यों होता है?
0: ऐसा ही सोचती है शोभा।
8: तो फिर घर में आके देखो, घर में भाई कहता भाई पढ़ाई करता था, मुझे बहुत मतलब दुख लगता था, भाई देखो कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मेरे मन में इतना दुख हो जाता है बहुत ज्यादा। तो फिर मेरी मम्मी को बोलती थी, इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, भाई वो लड़का है, वो बड़ा होगा, वो बड़ा होकर नौकरी करेगा, वो माँ बाप को खिलाएगा, आप तो पढ़ाई घर की हो बेटा, आप तो पढ़ाई घर जाओगी।
0: करीब 77% महिलाओं को प्रशिक्षित दाइयों की सुविधा नहीं मिलती, समय पर उपचार की व्यवस्था नहीं होती, अस्पताल न ले जाने के पीछे भी रहस्य है। अस्पताल गई औरत तो घर पर काम कौन करेगा? गुलबर्गा की डॉक्टर इंदिरा वेलग्रप्पा का यही अनुभव है।
9: उन्हें समझता है कि सब लोग खाने के बाद जो मिलता है खाली वो खाने का, तो इसलिए उन्होंने टाइम पे टाइम पर खाना नहीं खाते, और जो खाते हैं उन्हें भी वो न्यूट्रिशन का नहीं रहता है, तो उन्होंने सब बीमार का शिकारी बन जाते हैं। तो ऐसा शिकारी बनने के बाद भी उन्होंने जो हमारे पास आते हैं तो लास्ट स्टेज में रहते हैं कि

0: ट्रीट करना भी उनको बहुत मुश्किल होता है। अगर तो भी हम उनका इलाज कर सकते बोले तो भी खून लाने के लिए, अच्छे अच्छे दवा लेने के लिए भी उनका मर्द लोग इनकार करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि औरत लोग का खाली काम क्या है, रसोई काम करने का। तो रसोई काम कोई भी कर सकता है। अगर मैं खून दिया बोले तो घर का बाहर का काम कौन करना, कमाई कौन करना, तो मेरा घर पूरा बर्बाद होता है। ये सोचने का भावना हमारे मर्द लोगों में बहुत है।
1: गुलबर्गा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शंकर का कहना है कि औरत का पढ़ा लिखा न होना कई मायनों में उसे उसके अधिकारों, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे भोजन और खुले जीवन से वंचित रखता है।
2: There is still a discrimination in giving education even to the girls, which definitely leads to a lowering of the literacy rates.
3: शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री पुरुष में गहरा अंतर है। वर्ष 1991 में कुल 60% पुरुष शिक्षित थे, जबकि महिलाएं केवल 40%, और गांव में तो साक्षर स्त्रियों की संख्या केवल 18% ही है। इसलिए अधिकतर स्त्रियां सेहत के प्रति लापरवाह और अंधविश्वासी होती हैं, और कम आयु में ही रोगों से घिर कर मर जाती
2: है।
1: महिलाओं के अधिकारों और जागृति के काम से जुड़ी सहबा हुसैन कहती है,
4: डिसीशन मेकिंग का जहाँ सवाल है वहाँ पर औरत चाहे वो कितना ही काम क्यों ना कर ले, घर का और बाहर का। यहाँ पर ऑफिस में भी जब औरतें जाती हैं, कई बार हमने देखा है जब हमने रिसर्च किया है, तो जब वो वापस आती हैं अपनी पूरी सैलरी जो है, जब अपनी कमाई है, वो या तो अपने सास या अपने आदमी के हाथ में देती हैं। उसका मतलब यही होता है कि उनके हाथ में बिल्कुल डिसीशन मेकिंग का कोई मुद्दा रहता ही नहीं है।
5: मेरा नाम आशा दीक्षित है और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में सहायक निर्देशक के पद पे काम कर रही हूँ। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रशिक्षा की भूमिका महिलाओं के प्रति सही दृष्टिकोण निर्माण की है, और एक ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रशिक्षा का है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम समय समय पे महिलाओं के साथ महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण की चर्चा भी करते हैं, और बहुत सी बातें चर्चाएं में तो बड़ी सकारात्मक दिखने को भी मिलती है। इस परिवर्तन में कितना समय लगेगा ये मैं नहीं कह सकती, पर एक उनके दिमाग में ये वाली बात डालनी तो होगी, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि महिला और पुरुष दोनों का एक दर्जा है, एक से अधिकार है, एक सा जीवन यापन की उनको स्वतंत्रता है।
0: मानव शास्त्र होने की लागू लाती मैं यही कहूंगी कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए इतना खर्च करने के बाद भी स्त्रियों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं आया है। आदिवासी समाजों में स्त्री की स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलता है। हम लोगों के आधुनिक समाज में लड़कों को खरीदा जाता है, जबकि जनजातियों में लड़कियों को खरीदा जाता है।
1: ये स्वर है रायपुर मध्य प्रदेश के रविशंकर विश्वविद्यालय की डॉक्टर मंजुला का। बात फिर विज्ञान के चमत्कारों पर आकर रुकती है। आज चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत काम हो रहे हैं, यहाँ तक कि सेक्स परिवर्तन संभव है। डॉक्टर एन के मोहंती,
6: काफी केसेस में हम देखे हैं कि अगर लड़के बनकर वो माँ बन सकते हैं, और एक दो केसेस तो वो लोग मैरिज कर लिया है, प्रेग्नेंट भी हो गए। एक लड़का आया था, एक बच्चा आया था, और हमने उसको पूरा जांच किया, और उनका कंप्लेन था कि मेरा लड़का में दाढ़ी और मूंछ नहीं होता है और मर्द की तरह दिखाई नहीं देता है। तो हमने पूरा जांच छिन जांच किया, उसको पता चला कि अंदरूनी वो लड़की है। तो जब हमने उनके पेरेंट्स को बताया कि उनको हम लड़की बना सकते हैं, वो माँ बन सकती है, वो तो बिल्कुल नाराज हो गए और बोला कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल छोड़ के, और छोड़ के चला गया।
1: सब कुछ मानसिक धरातल पर निर्भर करता है। विज्ञान के चमत्कार, चिकित्सा के नए नए उपकरण धरे बिखरे रह जाते हैं, और उनका उपयोग उसी दिशा में होने लगता है जो व्यक्ति के मन को भाते हैं। साथ ही ये सत्य है कि समय परिवर्तनशील है। विचार ने आंदोलन और जागरण का रूप ले लिया है।
7: कुसुम लता जी, आपकी राय में इस समस्या का कोई हल है?
8: इस समस्या का हल कानून के पास नहीं है, औरत के पास है, उसे जागरूक होना है। अच्छा ये बात बताइए, अगर औरतों की संख्या इसी तरह कम होती गई, तो अधिक मर्दों को कुंवारा ही रहना होगा। कितने ही मर्दों को बीवी नहीं मिलेगी, माँ नहीं मिलेगी, बहन नहीं मिलेगी,
7: बेटी नहीं मिलेगी और इस तरह कुदरत का बराबर

0: तू तैयार है टेस्ट कराने के लिए या नहीं?
1: मैं तैयार तो हूँ माँ जी, लेकिन एक शर्त पर। मेरे गर्भ में पलने वाला शिशु चाहे लड़की हो या लड़का, वो जन्म लेगा। मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी।
0: तेरी ये मजाल, अभी देखती हूँ तुझे।
1: माँ जी हाथ मत उठाना कहीं।
2: माँ दीपा ठीक कह रही है, दीपा भी इंसान है। दीपा के गर्भ में पलने वाली संतान आखिर मेरा भी तो अंश है।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं, समय हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। आइए आपको सुनाते हैं ये गीत हरिहरन और सोनू निगम की आवाज में, बॉर्डर फिल्म से।

अभी आपने 1942 और लव स्टोरी फिल्म से शिवाजी चट्टोपाध्याय की आवाज में ये गीत सुना। आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत गदर फिल्म से, जिसे गाया है उदित नारायण और प्रीति उत्तम ने।

अभी आपने उदित नारायण और प्रीति उत्तम की आवाज में गदर एक शेर का कथा गाई है। आइए आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर की आवाज।

0: सुना फिल्म संगीत कार्यक्रम ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है एफएम बैंड 101.8 MHz पर रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचारों को और उसके बाद अंग्रेजी में समाचारों को जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: सुना रावण फिल्म का गाना।

0: प्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं, हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल दिन के 11:55 पर हमारी अगली प्रसारण सभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।